नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: más. भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया।

0: भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य कल्याणकारी कार्यों में अपना मन लगाता है, वैसे वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं, यानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से ठीक थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 301।

सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, भाग चौथा आज प्रसारित किया जाएगा। इसका कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भर ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे से सुनेगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज 44वां भाग प्रसारित किया जाएगा इस श्रृंखला का। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता ऋषि कपूर पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे से सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, संवादक हैं ममता सिंह, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से सुनेगा रंग तरंग, दिन में 12:05 से आपको सुनवाएंगे यादों की महफिल सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे से, दोपहर 2 बजे आपको सुनवाएंगे वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसका 44वां भाग आज प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे में

हेलो सहेली, ये कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे से। संपादक हैं सोनाली पाठक, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक। शाम 5 बजे से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण, तराने नए पुराने। शाम 5:30 से शाम 6:35 से सुनेगा संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे से। शाम 7:45 से सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें। इसके अंतर्गत फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रकर की बातचीत का 9वां भाग प्रसारित किया जाएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका हीरों का हार, लेखन रमेश उपाध्याय का, निर्देशन सत्येंद्र शरत का। रात 8:15 से चित्रलोक। रात 9 बजे से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर, आलेख एवं स्वर जी श्याम का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर पूजा नारायणिया का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

भगवान शिव, शंख और चंद्रमा की सी कांति वाले, काल के समान भयानक सर्पों का आभूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रिय, काशीपति, कल्याणकारी कल्पवृक्ष, गुणों की राशि और कामदेव को भस्म करने वाले हैं, जो सत्कर्मियों को अत्यंत दुर्लभ मुक्ति दे डालते हैं। इन देवाधिदेव महादेव से तुलसीदास जी ने अपने कल्याण के विस्तार की मंगल कामना की है। सागर तट पर वानर सेना समुद्र लांघने को तत्पर खड़ी है। श्री राम अपने सहयोगियों से पूछते हैं, अब विलंब क्यों हो रहा है? जामवंत तथा हनुमान प्रभु रामचंद्र की महिमा का बखान करते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आपका फिर एक बार स्वागत है। और स्वागत है जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की विशेषताओं की बात हो रही है, हम ये जो गायकी है किराना घराने की उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आज कौन सी विशेषता है इस घराने की जिस पर आप हमें जानकारी देंगी?
2: श्रुति का जो हम सूक्ष्म और सटीक ऐसा प्रयोग करते हैं घराने में,
1: जी जी,
2: एकदम सूक्ष्म अंतर। श्रुति मालूम है आपको ना, दो स्वरों के बीच में
1: जी
2: जो स्वर जो हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते ऐसे जिस स्वर रहते,
1: हाँ हाँ,
2: उसे हम श्रुति कहते हैं
1: जी।
2: सा और रे उसके बीच में, वैसे तो 22 श्रुति मानी गई है,
1: हाँ।
2: सारे ग पधनी,
1: हाँ।
2: उसमें लेकिन असंख्य है श्रुतियाँ
1: जी जी।
2: ये नियमित रियाज और स्वर साधना उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: वैसे तो सब घराने में दिया जाता है, लेकिन किराना घराने का जो रियाज है,
1: हाँ।
2: उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है। तो फिर श्रुति का सूक्ष्म और सटीक प्रयोग,
1: हाँ।
2: इसके बारे में हम बोल रहे थे कि नियमित रियाज को स्वर स्थिर मधुर और प्रभावशाली बनता है
1: जी।
2: फिर श्रुति के सूक्ष्म अंतर की पहचान विकसित की जाती है, इससे गायन में गहराई, निखार और भावपूर्ण अभिव्यक्ति आती है
1: जी।
2: स्वर में स्थिरता और नियंत्रण विकसित किया जाता है
1: जी।
2: लंबे लंबे आलाप और एक स्वर पर टिके रहने की क्षमता स्वर साधना से प्राप्त होती है। किराना घराने में स्वर साधना को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इस घराने की गायकी स्वर प्रधान मानी जाती है, जहां मेंड श्रुति और स्वर लगाव पर विशेष बल दिया जाता है।
1: अच्छा,
2: स्वर साधना केवल तकनीक नहीं बल्कि साधना और आत्मानुशन का एक माध्यम है।
1: अच्छा,
2: यही साधना कलाकार की गायकी को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
1: बिल्कुल सही।
2: इसीलिए ये जो हम बोलते हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव हम लेते हैं जब हम गाना सुनते हैं। इसीलिए मैं नहीं जानती मैं कितना ये जो मैं बोलती हूँ उसके ऊपर न्याय दे सकूंगी, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगी।
1: तो कौन सा राग आपको चुना है?
2: अहिर भैरव।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर। और इस बंदिश को सुनने के बाद राग अहिर भौरव पर आधारित विजेता फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: वाह क्या बात है,
0: जो आशा भोसले जी और सत्यशील देशपांडे के स्वरों में। आइए अपने श्रोताओं को सुनवा।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं एक कृष्ण भजन से, जिसे हमने लिया है नरसी भगत फिल्म से। हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डिकिया आवाजें, गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा इसे और रवि का संगीत।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई गांवों में
0: जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में छोटी बहू फिल्म का गाना। इंदिवर ने लिखा इसे और कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: रे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
3: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
3: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
3: सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं संत कवित्री मीराबाई की पारंपरिक रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है पंडित रविशंकर ने

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में नास्तिक फिल्म का गाना, कवि प्रदीप की रचना है और सी रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया है इसे।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
2: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त की आवाज में दो भाई फिल्म से राजा मेहदी अली खां के शब्द हैं और तर्ज बनाई है एसडी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रिय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मिस मैरी फिल्म के गाने के साथ। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में कभी कभी फिल्म का गाना। साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं खयाम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आइए अब सुना जाए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खेल खेल में। इस फिल्म का गाना गुलशन बावरा हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में कर्ज फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: सिलेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में बॉबी फिल्म से। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है,
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
5: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से।

0: भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प
7: योजना उन नौजवानों के

0: ताकि आप जब 60 साल के होंगे
1: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े,
0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।

0: समाचार लखनऊ।
1: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: बैरिस्टर जिन्ना द्वारा रखे गए मुद्दों में विसंगति दिखाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हों तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना भी मूर्ति पूजा ही है। क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं, इसलिए इस गीत की भाषा तो ऊपरी बहाना है। उसका असली कारण राजनीतिक ही है। उसे देखने के लिए उदार दृष्टि, मुक्त विचारधारा और चिंतनशीलता की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों के अभाव के कारण इस पर किसी ने भी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया है।
0: रजाउल करीम ने इस प्रकार वंदे मातरम पर लगे इन आक्षेपों को तर्कसंगत ढंग से खंडित किया।
2: मुस्लिम समाज की वंदे मातरम के प्रति इस भूमिका के विरोध में सबसे प्रखर भूमिका हिंदू महासभा ने निभाई। स्वतंत्रता वीर सावरकर की रत्नागिरी में नजरबंदी से मुक्ति के बाद हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने लोकशाही स्वराज्य पक्ष शुरू किया था। उस दल के सहयोग से हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाए इसलिए वंदे मातरम दिवस मनाकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग का वंदे मातरम गीत के प्रति जो विरोध था उसे तोड़ने के लिए 26 अक्टूबर 1937 का दिन वंदे मातरम दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।
0: उसी समय मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया हुआ वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ भारत का ध्वज पेरिस से सरदार सिंह राणा के पास से केसरी के तत्कालीन संपादक और लोकमान्य तिलक के नाती गवी केतकर के पास 22 अक्टूबर को पहुंचा। वंदे मातरम दिन के अवसर पर पुणे में पहुंचे इस ध्वज की बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हुई सभा में स्वतंत्रता वीर सावरकर और सेनापति बापट के भाषण हुए।
2: जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन थी वैसे ही हिंदू महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि दल माना जाने लगा। 1937 से 1939 के काल में मुस्लिम लीग के वर्चस्व के कारण बंगाली हिंदुओं पर एक प्रकार का दबाव और आतंक छाने लगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ ऐसा आह्वान किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही वे वंदे मातरम के प्रेम से ओतप्रोत थे। 1926 में 14 वर्ष की आयु में नागपुर के बैरिस्टर मोरोपंत अभ्यंकर के घर गांधी जी के सामने छोटे विनायक ने संपूर्ण वंदे मातरम

0: गाकर सुनाया था और उसके बाद शास्त्रीय गायन में बड़ी निपुणता प्राप्त कर मात्र 17 वर्ष की आयु में संगीत सुधाकर ये संगीत की प्रतिष्ठित उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। स्कूल के दिनों में जॉर्ज नृपा गावे सद्भावे वंदुनिया पदा ये पंचम जॉर्ज की कविता गाने वाला विनायक आगे चलकर वंदे मातरम का कट्टर समर्थक बन गया।
1: 1938 में हिंदू महासभा के कलकत्ता

के कार्यक्रमों में उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया जाता था। खनकदार फिर भी विलक्षण मधुर आवाज, अभ्यासपूर्ण और भाव रसपूर्ण गायकी के कारण उनका वंदे मातरम लोकप्रिय हो गया।

0: 1938-39 का कालखंड और भी अधिक संघर्षमय बन गया था। दिनांक 7 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा के कारागार में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजबंदियों ने भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी वंदे मातरम गाता ही रहा। जेल अधिकारियों ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। उस समय भी रामचंद्र राव वंदे मातरम के नारे लगाते ही रहे। आखिर वार्डन ने ही ये पिटाई रुकवाई। खून से लथपथ रामचंद्र राव ने आधी बेहोशी की हालत में भी वंदे मातरम का उच्चारण बंद नहीं किया था। उन्नीस के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वतंत्रता वीर सावरकर ने रामचंद्र राव को गौरवान्वित करते हुए उन्हें वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि देने की घोषणा की। आगे चलकर रामचंद्र राव वंदे मातरम रामचंद्र राव इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: देश भर में घट रही घटनाओं के पृष्ठभूमि में आशा की किरणें राजनीतिक स्तर पर दिखने लगीं। इन सब का परिणाम आसपास की परिस्थिति पर खुद बंगाल में भी होता रहा। अप्रैल 1940 में कलकत्ता महानगर पालिका के वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव में नगर पालिका प्रशासन में यूरोपीय प्रशासकों के एकाधिकार तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र के भाई शरद चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। नगर पालिका स्तर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी विश्वास के आधार पर हुआ यह संपूर्ण देश भर में एकमात्र गठबंधन था।
0: दिसंबर 1940 में मुस्लिम लीग के एक मंत्री ए के फजलुल हक ने भी संयुक्त मोर्चे का प्रयास शुरू किया। जिस बंगाल में मुस्लिम लीग का पौधा उगा और फला फूला, उसी बंगाल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए। हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त सरकार कभी भी टिक नहीं पाएगी, इस तरह के अंग्रेजों के झूठे प्रचार को इन प्रयासों ने करारा जवाब दिया। सुभाष चंद्र के भाई और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष शरद चंद्र बोस, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा सरकार स्थापित करने का

0: समर्थन किया। इस संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। विशेष बात यह है कि इस मोर्चा सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समय वंदे मातरम गीत गाने का कभी भी विरोध नहीं किया।
1: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 44वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत बहुआयामी है। वे बाल कृष्ण के रूप में निश्चल आनंद, गोपाल के रूप में प्रकृति और लोक जीवन से जुड़ाव, श्री राधा के साथ प्रेम के प्रतीक और महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में ज्ञान एवं कर्तव्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज के इस

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक कृष्ण भजन से, जिसे हमने लिया है बॉलीवुड और हॉलीवुड इस फिल्म से। सौम्या ने गाया इसे, गीतकार हैं सौम्या और संगीतकार हैं संदीप चौटा।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
0: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। इन संदेशों के पहले आपने जो गीत सुना वो हमने लिया था पी से प्यार एफ से फरार फिल्म से, जिसे गाया था पंडित रोशन लाल वर्मा और साथियों ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में कृष्ण और कंस। इस फिल्म का गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखा है इससे और संगीत से संवारा है शांतनु मोइत्रा ने।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं पहले ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर

0: शोर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज दादा भाई नेहरू जी का जन्म दिवस है। दादा भाई नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन महान राष्ट्रवादियों में थे जिन्होंने अपने विचारों, तर्कों और राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आर्थिक शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। उन्हें सम्मानपूर्वक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। दादा भाई नेहरू जी मूलतः शिक्षाविद, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीयों में आधुनिक शिक्षा और राजनीतिक चेतना के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में प्रमुख थे। दादा भाई नेहरू जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी था। उन्होंने प्रमाणों और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बताया कि ब्रिटिश शासन भारत की संपदा को विभिन्न माध्यमों से इंग्लैंड ले जा रहा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने भारत की गरीबी के वास्तविक कारणों को सामने रखा। उनका स्पष्ट मत था कि भारत की निर्धनता भारतीयों की अक्षमता का परिणाम नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक व्यवस्था का दुष्परिणाम है। आपका निधन 30 जून 1917 को हुआ। दादा भाई नेहरू जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है मणिकर्णिका फिल्म से।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तरुण सागर, एलिसा मेंडोसा और लॉय मेंडोसा की आवाज़ों में हाउसफुल का गाना। और अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो। इस फिल्म का गाना गुलजार के हैं बोल और विशाल भारद्वाज की है तर्ज।

दोस्तों आज 4 सितंबर है, आज है ऋषि कपूर जी का जन्म दिवस। हालांकि भौतिक रूप से वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कला के माध्यम से हमारे दिलों में बसते हैं और हमेशा बसते रहेंगे। ऋषि कपूर जी एक सदाबहार अभिनेता थे और सिनी जगत में सदा प्रासंगिक रहे थे और रहेंगे भी। तो चलिए उन्हीं की फिल्म का एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है 102 नॉट आउट। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, और अमिताभ बच्चन ने संगीतबद्ध किया है इस गाने को।

0: Yo.
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे सूरज पे मंगल भारी इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। दोस्तों आज संगीतकार आदेश श्रीवास्तव जी का जन्मदिवस है। वे अपने सुरीले संगीत के लिए जाने जाते थे और उनका संगीत सुरीला भी होता था और अनूठा भी। आइए उनकी ही फिल्म का एक गाना सुनते हैं, आप सुनवा रहे हैं राजनीति फिल्म का गाना। आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकोलसन और शशि ने गाया इसे, समीर के बोल हैं और तर्ज बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
1: रात जी आ रही दिल अंधेरा है, तू जो सजन नहीं मेरा है रात।
0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
2: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
2: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, वो आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाजों में गदर 2 फिल्म से सईद कादरी के हैं बोल और मिथुन की है तर्ज।

श्रोताओं, गदर टू फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक सजीले बांके नौजवान की।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजतपट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इस गाने में काम किया था। हमें पता है कि जब आप ये गाना सुनेंगे, आपके मन में रजतपट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी।

0: ऋषि कपूर ने बताया था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए, पर पानी में चलते हुए आंखों पर जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस जी को आइडिया आया और उन्होंने चॉकलेट का लालच दिया। 3 बरस के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: एक किस्सा दादाजी ने सुनाया था, जोकर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। तो मैं तो बच्चा था, 70 में 18 साल का था, तो अवार्ड मिला तो मैं पापा के पास गया, पापा को मैंने दे दिया अवार्ड। तो उन्होंने तुम जा दादा के पाँव में रख दो। तो मैं गया दादाजी को मिलने, दादाजी ने बहुत प्यार किया, मैंने वो बोला मैंने जीता है और मैंने उनके पाँव में रख दिया। दादाजी वहां फूट फूट के रोने लगे। मुझे उस वक्त उस सेंटेंस की गहराई का मतलब मुझे समझ नहीं आया था, जो मुझे बाद में समझ में आया। तो उन्होंने सिर्फ मुझे चूमा माथे पर, कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया।
0: बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के जरिए रजत पट पर आए थे, पर यह कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। यकीन मानिए ये सब अचानक हुआ था।
1: जोकर पिक्चर नहीं चली, फर्स्ट पार्ट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मैं उसमें एक एडोलेसेंट बॉय था। तो पापा बना रहे थे एक यंग स्टोरी, लव स्टोरी, सही मानू में टीनेज लव स्टोरी बॉबी के रूप में। तो उन्हें एक बॉबी अपनी हीरोइन की तलाश थी। तो जब डिंपल को शॉर्टलिस्ट किया तो मुझे भी कहा गया कि भाई तुम भी रिड्यूस करो, तुम भी वेट कम करो, मैं तुम्हें लूंगा हीरो। पिक्चर बन रही थी बॉबी, बॉबी कौन था? डिंपल। मेरे लिए जैसे आज की तारीख में जैसे अब जो भी हीरो के बच्चे होते हैं तैयार किया जाता है फिल्म में हीरो बनने का, तो वो घोड़े में एंट्री करते हैं या मोटरसाइकिल पे एंट्री करते हैं, वो वैसे कुछ नहीं था। मैं बाय डिफॉल्ट हीरो था। पिक्चर तो टाइटल रोल तो डिंपल की थी, डिंपल वाज़ द हीरो ऑफ द फिल्म। मैं बाय चांस मुझे लिया गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि राज कपूर साहब ने घर में बैठा बैठा के वो ले लिया पिक्चर में। उन बीच में पिक्चर खत्म हुई, डिंपल की शादी हो गई, वो इंडस्ट्री छोड़ गई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट हो गई, पूरा क्रेडिट मैंने खा गया, मैं हो गया बन गया एक्टर।

किसे पता था कि बॉबी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रूमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा

सीमा के पहले सबसे लंबी पारी वाले रोमानी हीरो बने। कमाल की बात यह भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी रेडियो पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। जैसे ऋषि कपूर की दूसरी ही फिल्म जहरीला इंसान का ये गाना।

जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रूमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की जरूरत होती है, एक ऐसे नायक की जरूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन जरूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। सन 1975 रफ

दिलचस्प बात यह है कि डिंपल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में।

0: जमाने से क्या।
1: ऋषि कपूर और नीतू सिंह लव आजकल, दो दूनी चार और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ में नजर आए। दोनों में शुरुआती फिल्मों के समय दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे। नीतू की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 बरस के ऋषि कपूर और 21 बरस की नीतू सिंह 22 जनवरी 1980 को परिणय सूत्र में बन गए।

0: सन 1979 में के विश्वनाथ की फिल्म सरगम उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रही।
1: डफली वाले, डफली बजा।

बॉबी के 9 बरस बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग।

इसके बाद राज साहब की अधूरी छूटी फिल्म हिना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था।

बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी।

ये कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिंपल हूं, नीतू सिंह हूं या टीना मुनीम।

अपने लंबे करियर में हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर।

0: तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम, साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं, जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई।
1: ये मातम क्यों मनाया हुआ है? मैं महारानी में जिंदा हूँ, जाओ जाओ उसे देखो खेलते हुए, जाओ जाओ जाओ, तुम सब जाओ, ये ऐसे मुंह मत अटकाओ, तुम जाओ जाओ देखो उसे खेलते हुए, आखिर मेरे नाम मेरी इज्जत से तो खेल रहा है वो, जाओ तुम लोग सब जाओ, जाओ कहते इनसे, मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं, ये लोग भी मेरे नहीं, लेकिन ये घर मेरा है, जमीन पे नहीं पीठ पे खड़ा किया इसे, और इन्हें कोई हक नहीं के मेरे सीने पे पैर रखे, दफा करें सबको।
0: साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ के रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी।
2: हाँ, यही कमरा है जहाँ सुनाई गई थी कहानी, और यही मैंने उनसे कहा था कि तुम पागल हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम पिक्चर फ्लॉप।

0: करा दोगे मुझे लोग ये ऐसे रोल में, मेरी इमेज क्या है, मेरी छाप क्या है और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? नहीं नहीं सर, आप तो बेहतरीन करें, बेहतर करें ऐसे वो करूंगा तो सही, मुझे भी मालूम है अच्छा एक्टर हूं मैं, करूंगा सही, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो मैंने ना ना करके उसको नकार दिया, मैंने बोला चले जाओ सर। देखो मैंने, उन्होंने हार नहीं मानी, एक महीने लगातार करण जौहर साहब और करण मल्होत्रा जो डायरेक्टर थे पिक्चर के, लगातार मेरे पीछे बने रहे कि आपको तो करना ही पड़ेगा। सही बात यह कमल जी, मेरे में एक्चुअली साहस यानी कि हिम्मत नहीं थी, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था ऐसे रोल करने का। मैंने सोचा कहीं मैं कर लूं और मेरे कारण पिक्चर ना चले तो लोग बोलेंगे देखो पिक्चर फ्लॉप हो गई ऋषि कपूर की वजह से, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई किसी को नुकसान हो। मैं जानता हूं कि एक्टर मैं थोड़ा बहुत ठीक हूं, मैं निभा लूंगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आप। तो मैं एक्चुअली सही मानों में उससे डर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जब बहुत दबाव आया तो मैंने उनसे सजेस्ट किया कि अच्छे काम करते हैं, एक लुक टेस्ट लेते हैं, यानी देखते हैं वो कैसा दिखेगा मेरे में। तो एक कच्चा पक्का हमने लुक टेस्ट लिया, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने थोड़ी हिम्मत बनी थोड़ा, मैंने कहा अच्छा तो मुझे कुछ सीन्स भी सुनाएंगे, फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत की और फिर मैंने बोला चलो भाई करते हैं देखते क्या होता है। अब जब फिल्म मुकम्मल हो गई, पिक्चर चल गई, हिट भी हो गई, कुछ बहुत लोगों ने हमारी भी तारीफ की, एक आध अवार्ड भी मिल गया, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो क्रेडिट है ये दोनों करण जौहर और करण मल्होत्रा का है। अगर उनका दबाव नहीं होता, अगर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऋषि कपूर ही कर सकता है रोल, तो ये मुझे कभी रोल नहीं मिला होता। ये मैं उल्टा उनकी सोच को मैं दाद देता हूं कि उनने कैसा सोचा कि ऋषि कपूर कर सकता है।
1: लाला मेरा नाम है, रौफ लाला, ये तो तू भूलेगा नहीं कि एक पल के लिए मैंने तुझे जहन्नम की याद दिला दी थी।
0: तो ये अवार्ड सही मानों में उनका है, मेरा नहीं। हाँ मेरी मेहनत थी, उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी एक फोरसाइट थी, आगे की एक सोच थी कि ऋषि कपूर सही है। मेरी तरफ से किसी का नुकसान हो जाए ये तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा।
2: साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नॉट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डी डे, एक ऐसी फिल्म जिसमें इरफान खान और ऋषि कपूर एक साथ नजर आते हैं।
0: एक बात बताओ, कैप्टन कौन है तुम दोनों में, ये या तुम? ये तो फौजी है, अकल से ज्यादा हाथ पैर चलाता है, तुम समझदार लगते हो। बात करते हैं चलो, वो एक फोन करना था।
3: अब मैं से कोई सौदा करने वाला दिखता है?
0: अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से।
3: अगर ये बात झूठ है खुदा की कसम मैं यहाँ पर गोली मारूंगा।
4: वली तू इसके बातों में मत आया, झूठ बोल रहा है।
2: इस दौर में भी ऋषि कपूर ने कई फिल्में की। 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था। 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया, सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्मफेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्मफेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 में फिल्म दो दूनी चार के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 बरस की उम्र में ऋषि कपूर ने अपनी आखिरी सांस ली। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। जमाना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा।

0: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज़, लेकिन रखिएगा

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा
0: नाम
1: जितेंद्र
0: आपका?
1: भाई, जितेंद्र
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है मेरी तरफ।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस
1: क्या करूं,
0: अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी आप बातचीत कर रहे हैं खत्म, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साक्य बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साक्य?
0: साक्य, अच्छा बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी करता हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है जी।
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते हैं अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी बताइए, गानों के शौकीन है, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी जी इन गायक गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा। बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने। और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, जो सुनता है आकाशवाणी मुंबई वो अपनी किस्मत में नाच करता है।
0: क्या बात है, और आपकी आवाज सुनते ही विविध भारती के लोग नाच करते हैं। बताइए अपना नाम और जगह का नाम। वैसे आवाज तो पहचान चुकी हूँ मैं
1: जी। हसीना भी मंसूरी बोल रही मैडम, फालदा नाका इंदौर से, और आपसे बहुत सालों के बाद बात हो रही लग रही है।
0: हमारी आपकी बात हुई थी हेलो सहेली प्रोग्राम में और हेलो फरमाइश में भी। बताइए अपने बारे में और इंदौर के बारे में, क्या कर रही हैं इन दिनों आप?
1: इंदौर तो बारिश थोड़ी कम हो रही है मैडम, मगर अच्छी है, ठीक, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, मगर बारिश होना चाहिए।
0: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी, फसलें सूख
1: पानी की कमी,
0: जाएंगी।
1: अभी इस साल भी बहुत कमी थी पानी की, और अभी तो बारिश हुई नहीं, तो फिर अगले साल क्या पता क्या होगा। नहीं,
0: जी, तो पानी की बचत के लिए आप कुछ करती हैं निजी स्तर पर?
1: मैं तो पानी की बचत इस तरह से करती हूँ, अगर कपड़े धोना रहता तो बाल्टी में पानी निचोड़ के उसको ही इस्तेमाल करते हैं, और बर्तन भी मांजते हैं तो बर्तन में, ये टब में पानी लेके बर्तन मांजते ही ज्यादा व्यस्त धुले नहीं, नल के नीचे डायरेक्ट नहीं बर्तन धोते, और नल के नीचे धोना ही पड़ता है, बहुत मद्दा करके धोते हैं, आराम से बर्तन धोते हैं, और कहीं पर भी रास्ते में जाते हैं नल खुला दिखता है तुरंत उसको बंद करते हैं, और घर में भी कहीं कोई पानी ढोलता रहता है तो बहुत गुस्सा आती, चिल्ला देते हैं हम लोग।
0: जी बिल्कुल, और पानी के एकत्रीकरण के लिए भी मुहिम चलानी चाहिए मिलजुल कर।
1: जी,
0: और आपका कामकाज बढ़िया चल रहा है?
1: हाँ बढ़िया चल रहा, पर अभी थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही तो जा नहीं रहे मैडम, हम बुखार आ गया था और आवाज भी ऐसी हो रही, बहुत मुश्किल से निकल रहा।
0: आवाज तो अच्छी खासी आपकी आ रही है, बढ़िया। तो आवाज में तो
1: अच्छा,
0: कोई समस्या नहीं दिख रही है आपकी, आवाज बढ़िया आ रही है।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया,
0: हाँ
1: बढ़िया आ रही। तो
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनवाए?
1: मैडम फिल्म का नाम है जाने मन, और गाने के बोल हैं, आएगी आएगी आएगी किसी को हमारी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हार को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे
0: जी जी जरूर,
1: खिचड़ी का।
0: हाँ तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की। वैसे तो दाल चावल,
1: बोले तो मसूर मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की, रोज खाई जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगा फाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: हाँ नाश्ते में खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी
0: हाँ
1: और भजिया मिलता है
0: तो बना भी
1: साथ
0: लेते,
1: में।
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन है?
1: नहीं नहीं बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ होटल है, होटल है
0: अच्छा,
1: वारंगा फाटा में होटल है।
0: क्या बात है। अब देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगा फाटा जाने का। वैसे
1: कभी भी मिलेगा खिचड़ी
0: जी
1: नाश्ता और खुश हो
0: जी
1: जाएंगे खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा
1: हाँ
0: लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है इस समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का,
0: हाँ
1: महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

क्या मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस
1: मैडम जी
0: रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से
1: जी
0: बोल रहे
1: यानी
0: हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडरलैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ,
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले भटूरे,
0: अच्छा
1: छोले
0: अच्छा
1: भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ
1: हाँ जी
0: जी,
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी
1: हाँ
0: गीत
1: जी
0: में
1: हाँ जी
0: पंजाबी
1: बिल्कुल
0: शब्द
1: मैडम,
0: होते हैं।
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक लाइन है,
0: हाँ
1: ओ पेके जान वाली है हाय नी किन्ना, ओ होय नी किन्ना, हाय नी किन्ना चीर लाएंगी, ये गाना पंजाबी है जी हमारा,
0: क्या बात है भाई, बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया।
1: बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, है ऐसी बात
0: अच्छा, आप किस लिए मशहूर है
1: नहीं
0: भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि जब प्रोग्राम चलता है ना
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं हम।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर
1: हाँ जी
0: प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: जी जी जी जी
0: और अपने
1: जी
0: बारे में
1: सर,
0: बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है,
0: अच्छा।
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: जी
1: सैर
0: जी
1: करो, और
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो,
0: बिल्कुल, तो आप अपने
1: और
0: माता
1: उसके
0: पिता की
1: बाद
0: सेवा
1: आगे।
0: करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अच्छा बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है
0: अच्छा, ओहो।
1: मैडम। मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए,
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया,
1: हाँ
0: तो
1: जी तो
0: आपकी तो आवाज भी अच्छी
1: बस
0: कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त में अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है
0: जी,
1: बिल्कुल मैडम। यहाँ वहां पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहां ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में ही, वापस नहीं जाएंगे हम।
0: जी। बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: संघर्ष किया
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: इन्होंने
0: बिल्कुल
1: बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी।
1: शूटिंग में जाता था, मुझे लाइट उसका काम मिला था, लाइट मैन का,
0: अच्छा, बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेबर वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा,
1: तो
0: वाह
1: फिर
0: भाई,
1: मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के अजय

0: देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं उनके साथ।
1: अच्छा अच्छा
0: तो बात कहा सुनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे, जब मैं बिन बताए उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
1: अच्छा।
0: बस बाहर आ गया, मुझे मूड खराब हो गया। मैंने कहा यहाँ तो, यहाँ पे मेरा होटल था उस टाइम, 10-10 वर्कर काम करते थे। तो मैं इसी कमांड में था कि यहाँ मेरा इतना बड़ा होटल है, 10 वर्कर काम करते हैं, ये वहां मुझे झिड़के मार रहे हैं। लेकिन वो झिड़के उनकी प्यार वाली थी, अगर सह जाता तो आज मैं कामयाब होता।
1: इसमें दो
0: नहीं तो
1: बातें
0: वो
1: हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोला तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर महोदय बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ, देखिए मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी, ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे। तो
1: जी, बिल्कुल
0: अब
1: बिल्कुल, बहुत बहुत
0: बताइए
1: धन्यवाद मैडम जी। ऐसा
0: क्या काम काज है
1: है।
0: आपका, अब हमारे श्रोताओं को
1: हाँ
0: बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में
1: जी
0: जाने।
1: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं टेलरिंग शॉप है मेरा करूँ आप रायपुर में मोहन जय के नाम से है, और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन ने फैशन डिजाइनर है,
0: अच्छी बात है,
1: और
0: क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिल के सब ये करते रहते हैं। और उसके बाद जो है कि देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है,
0: जी।
1: तो वो सब हम एक साथ जो सब काम करते रहते हैं। और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनते जा रहा है, बनने जा रहा है, मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं
1: जी,
0: और
1: बिल्कुल
0: उस
1: बिल्कुल।
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़ रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने।
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी। सुबह
0: अच्छा।
1: वो वर्कशॉप में रहते हैं तो कोई रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते हैं, रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी।
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल देवांगन के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण का?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है, और उनका जो बाल रूप में हर एक बात

0: जो होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है मैडम जी।
1: जी जी उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने, कभी पढ़िए सूर की पद रचना। उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
0: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का, और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और उसका बोल है, मत गया सुर सारी नगेरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी खलील जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला सही का और तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये गाना सुनना चाहिए।
0: जी अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है। ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हिराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम?
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल अच्छा शहर है मैम जी, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छे है जगह बने हैं, बढ़िया है। कमला पार्क है
0: जी,
1: जी मैम।
0: और गाना किस तरह का पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
1: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
0: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
0: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा, और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ
0: हाँ
1: पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ हाँ
0: खास हो
1: मैडम,
0: गया ना
1: हाँ हाँ
0: आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहां पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियां पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: नहीं
0: जाती?
1: मैडम, बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है ये।
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियां पास होती है मैडम। संगम
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिले मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।
1: ओ मैं

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपको नीमी श्रोता लतीफ अहमद रैना
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं। सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गामा के साइड में दूध
0: जी,
1: पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है? ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी,
0: जी जी
1: नॉर्मल।
0: तो आपका क्या काम
1: हाँ
0: है
1: जी, बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ
0: वहाँ पर?
1: जी।
0: खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी यहाँ, इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी
1: हाँ,
0: फसल उपजती है ज्यादातर?
1: यहाँ पे ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा, बर्फ गिरती है तो
1: यहाँ
0: आप
1: तीन
0: लोगों
1: फुट
0: को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे।
0: जम जाता है बर्फ, और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग जाते हैं।
1: वो सोनामर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो
1: हाँ,
0: बताइए तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे रिकॉर्ड है कोई भी सुनाइए।
0: तो ठीक है,
1: हाँ
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी, और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: बद्ध निवेदन है कि आगामी दो माह तक कृपया फोन न करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2870288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश, विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम डूब जाएं श्री कृष्ण की भक्ति, उनके प्रेम और उनकी मधुर लीलाओं के रंग में। आज इस कार्यक्रम में हमने योगेश्वर, मुरलीधर, गिरिधर, नटवर नागर, भगवान श्री कृष्ण के भजन आपके लिए चुने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म अमर प्रेम का ये गीत सुना। गीत आनंद बख्शी का था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

दोस्तों, नटखट कान्हा की मुस्कान, माखन की मिठास और बांसुरी की मधुरतान। आज का दिन है प्रेम, भक्ति और उल्लास का। आइए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम रंग जाएं कान्हा के उस प्यारे रंग में। ये आवाज है शोभा गुरटू की। आप सुन रहे हैं मीराबाई का ये भक्ति पद।

शोभा गुर्टू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे संत मीराबाई का ये भक्ति पद। आइए भगवान श्री कृष्ण के उस पावन रूप की बात करें जिसकी हर लीला, हर मुस्कान और हर बात मधुर है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित मधुराष्टकम दोस्तों वैसे तो सदियों से हमारे दिलों में बसा है, लेकिन जब इस दिव्य स्तोत्र को हम सुनते हैं तो भक्ति का जो रस है वो दोगुना हो जाता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, ये सुनते ही मन पूरी तरह से कृष्णमयी हो जाता है ना? तो आइए श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने का एक जरिया और ढूंढ लें, इस मधुरता का हम आनंद लेते हैं। स्वर शंकर महादेवन का है, संगीत केदार पंडित का।

अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में राजेश जौहरी का लिखा एक भक्ति पद सुनिए, आवाज पामेला सिंह की है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आज का ये कार्यक्रम हमने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है। आइए एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी रंग वाला मीराबाई का भक्ति पद आपको सुनवाते हैं, श्याम माने जाकर राखू जी। इसमें मीरा कृष्ण से कहती है कि मुझे अपना सेवक बना लो, मैं वृंदावन में रहकर तुम्हारे दर्शन कर सकूं और तुम्हारी लीलाएं गा सकूं। दोस्तों ये पद राजस्थानी रंग वाले अत्यंत मधुर पदों में गिना जाता है।

और आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये भक्ति पद। खय्याम साहब का संगीत है और स्वर मोहम्मद रफी का।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम में अगला भक्ति पद हमने एमएस सुबुलक्ष्मी की आवाज में आपके लिए चुना है। ये भक्ति पद संत मीराबाई का है।

मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, संत मीराबाई का लिखा भक्ति पद अभी आपने सुना MS सुबुलक्ष्मी की आवाज में। दोस्तों, भगवान कृष्ण को हम सभी ने अपनी अपनी नजरों से देखा, चाहे राधा हो, मीराबाई हो, रुक्मणी हो, गोपियां हो, ग्वाले हो, सभी ने कृष्ण को देखा, चाहा, अपनी अपनी नजर से समझा। लेकिन संत सूरदास ने भगवान कृष्ण को कैसे चाहा, कैसे समझा? सूरदास की दृष्टि में कृष्ण का नाम ही वो मधुर संगीत है जिसमें डूबकर भक्त संसार के सारे दुख भूल जाता है। संत सूरदास ने अपने पदों में बाल कृष्ण की नटखट छवियों से लेकर उनके दिव्य और करुणामय स्वरूप तक कृष्ण को प्रेम के हर रंग में देखा है। और संत सूरदास के लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं, बल्कि उनके जीवन की आंखें और उनके हृदय की ज्योति थे। तो आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में संत सूरदास का ये भक्ति पद।

श्रोताओं, कृष्ण की बांसुरी, हाँ कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वो एक प्रेम की पुकार थी जो हर हृदय तक पहुंचती थी। और कहते भी है ना कि जब श्याम अधरों पर बांसुरी रखते हैं तो वृंदावन की गलियां भी जो है महक उठती हैं, और ऐसे में सभी का जो मन है वो ठहर सा जाता है ना। शायद इसीलिए आज भी जब कोई स्वर गूंजता है, श्याम तेरी बांसुरी पुकारे राधा नाम, तो लगता है कि प्रेम की वही अनंत पुकार आज भी हमारे मन के वृंदावन में गूंज रही है। तो इसी मधुर बांसुरी की तान के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है गीत गाता चल, आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: तरंग।
1: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।
2: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थे, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजें। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव की है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्युलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति। आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थीं आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं आज फिर। और आज इस सफर में हम थोड़ा सा कवितामय हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप समझ गए मेरा इशारा, क्योंकि संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे लिखे गए हैं दोस्तों, जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है, भावों की गहराई है। और आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे वही गीत, कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत जिनमें हिंदी कविता अपनी पूरी गरिमा और मधुरता के साथ खिल उठी है। तो आइए शब्दों और सुरों के इस खूबसूरत संगम में हम खो जाते हैं और चलते हैं इस सुरीले सफर पर। हमारे दोस्तों ने कहा है कि आज भी इबारत मंदाकिनी जी ने लगता है रात भर जाग कर लिखी है, हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे, इसका जवाब देने में तो हमें घंटों लग जाएंगे। तो आपको इस इबारत का जवाब देने के लिए कहा किसने था, ये बताइए। हम तो आपसे दो सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको देना है और इबारत पढ़कर आपके दिलो दिमाग में जो विचार आए वो लिखने हैं। तो इबारत पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगा होगा मुझे लगता है। चलिए हम टुकड़ों में आज इसे पढ़ते हैं, क्योंकि सफर लंबा है और हमें कविता में भी होना है। हमने आपके लिए लिखा था कि हिंदी कविता में प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम में श्रद्धा है, समर्पण है, प्रतीक्षा है, विरह है और एक दूसरे के अस्तित्व में अपना संसार खोज लेने की भावना भी है। तो जब कोई कवि अपने प्रिय को केवल प्रिय नहीं बल्कि अपने प्राणों की अधिष्ठात्री, अपने हृदय की स्वामिनी या प्रिय प्राणेश्वरी मान लेता है, तब प्रेम कविता बन जाता है। और प्रेम का दूसरा रूप हम कहते हैं प्रतीक्षा को। हाँ, कभी प्रिय सामने नहीं होता लेकिन उसकी अनुपस्थिति हर क्षण, हर पल, हर क्षण सालती रहती है। मन प्रश्न करता है, आंखें खोजती हैं और हृदय पुकारता है, तू छुपी है कहाँ। और ये केवल विरह का गीत नहीं बल्कि प्रतीक्षा की कविता है। और इसी प्रेम में जब रंग जुड़ता है प्रकृति का, प्रकृति जुड़ती है, कल्पना जुड़ती है, तब शब्दों में चित्र बनने लगता है। कितना अद्भुत लगता है तब कि कवि फूलों के रंग को दिल की तरंग से जोड़ देता है। और यही कविता की शक्ति है, जहां प्रकृति बाहर नहीं रहती, हमारे भीतर उतर जाती है। बस उसे महसूस करना होता है। और हाँ, कविता का दूसरा रंग है प्रकृति। हिंदी कविता और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है। फूल, पत्ते, ऋतु, आकाश, चांदनी और जल केवल दृश्य नहीं रहे बल्कि हिंदी कविता में ये भावों के प्रतीक भी बन गए। तो कवि कहता है, क्या कहता है, स्वप्न झरे फूल से। आहा, कितना प्यारा गीत है। तो कवि केवल फूल झरने की बात नहीं करता, वो स्वप्न के टूटने और जीवन के क्षण

0: गुड़ सौंदर्य को एक साथ हमारे सामने रखने की बात करता है कि स्वप्न भी फूलों की तरह है, सुंदर कोमल क्षणिक, और शायद इसी क्षणिकता में उनका सौंदर्य भी छिपा हुआ है। तो चलिए, ये इबारत का हमने पहला भाग पढ़ा है क्योंकि इस सफर पर हम निकल पड़े हैं और गीत का आनंद भी हमें लेना है, तो करते हैं शुरुआत। क्या कहते हैं आप
1: प्रिये?
0: हम भी श्री गणेश करें इस सफर का।

जी तो श्री गणेश तो हो गया है ना इस कार्यक्रम का, और हम सफर पर निकल भी पड़े हैं। बहरहाल हम आपको बता दें, किशोर कुमार की आवाज में आपने फिल्म हम तुम और वो का गीत सुना। गीतकार वर्मा मलिक थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इस विस्तृत सुंदर सी इबारत के अनुसार कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाली उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। इसमें कम शब्दों के माध्यम से गहरे भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का ऐसा क्रम होता है जो सुनने में संगीत जैसा लगता है। कविता का एक सुंदर संसार प्रकृति भी है, लेकिन कविता केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन के रास्तों पर भी हमारे साथ चलती है। धूप हो या छाव, साथ हो या अकेलापन, वो हमें रुकने के बजाय चलते रहने और जीवन को गीत की तरह जीने की प्रेरणा भी देती है। इबारत में बहुत सारे लोकप्रिय गाने भी हैं और आपने उन लोकप्रिय गानों का जिक्र किया भी है। देखिए ना, हमने इबारत लंबी लिखी, लेकिन साथ में कोशिश यही की कि उस इबारत में छिपे गीत संगीत को आप पहचान लें, और आप लोगों ने पहचान भी लिया।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो इबारत नहीं है, इबारत 5-10 पंक्तियों की होती है, आपने तो पूरा निबंध लिखा है और उस अंत में गीतों के बोल लिख दिए जैसे प्रिय प्राणेश्वरी या और बहुत सारे गीतों का। आप इसे जिस अर्थ में देखना चाहें ये आपकी पसंद है ना। हमने तो कोशिश की है कि जो कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं यानी ऐसे गीत जो लिखे गए फिल्मों के लिए लेकिन जिनमें कविता रही, कविता की सुगंध मिली, भावों की गहराई मिली, हमने उन गीतों का चयन आज किया है और उन गीतकारों ने फिल्मी गानों को हिंदी कविता के रूप में जो पेश किया वो बहुत ही लाजवाब रहा है उनका ये प्रयास। तो आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हीं गीतों पर केंद्रित रखा है, तो जाहिर है बात कहने का अंदाज भी थोड़ा सा तो खुला होना ही होगा ना। किसी बात को समझाने के लिए आप उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लंबे अंतराल के बाद सुरीला सफर लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी के साथ सभी मित्रों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं और लंबे अंतराल की तरह आज आपने इबारत बड़ी और लंबी डाल दी है। इस पर फिल्म आनंद में राजेश खन्ना द्वारा बोला डायलॉग याद आ गया, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, क्या बात है। तो आज का कार्यक्रम भी बड़ा है, देखिए ना कितनी बड़ी बात लेकर हम आए हैं कि जीवन में कविता क्या मायने रखती है और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है, क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्द शैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद लय को लेकर आई कविता के भीतर जो सौंदर्य भाव और संदेश मिलता है वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है, आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है और कहीं ठिगनी रह जाती है तो हाइकू कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा, बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार हैं नीरज।

झुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया चलो चली दुल्हन गाँव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन।

0: गीतकार नीरज की ये सुंदर कविता अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी
1: की। नयन नयन बहक उठे नयन नयन।

गीतकार नीरज की ये सुंदर कविता अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है, तो हमने भी सोचा इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दिया जाए ताकि आपको बोझिल न लगे। तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्जवल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है। क्या

आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं परिवार है, धरती केवल मिट्टी नहीं माँ है, आकाश केवल विस्तार नहीं पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कही पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएं लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविंद्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है, या कि ये भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश छल के, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने उषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया, और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी कायनात से जोड़ देता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना, और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं। आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में। छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं। प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम समर्पण कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है, और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है, और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं, अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक्षा में वही विरह है, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य, और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं, और कभी भीतर से आवाज देते हैं, चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपके

पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है।

हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिए, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्ति पद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपाल दास नीरज की है वो सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूं, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास के बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

ये कौन घुंघर झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंच चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका।

में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता

रहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेंद्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादम्बिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, देवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है, रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं, अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं, बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाएं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं, क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर, आंखों पर आपकी हर बात आपका हर भाव, बस यही होना चाहिए कि इस

तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया यह गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: बैरिस्टर जिन्ना द्वारा रखे गए मुद्दों में विसंगति दिखाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हों तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना भी मूर्ति पूजा ही है। क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं, इसलिए इस गीत की भाषा तो ऊपरी बहाना है। उसका असली कारण राजनीतिक ही है। उसे देखने के लिए उदार दृष्टि, मुक्त विचारधारा और चिंतनशीलता की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों के अभाव के कारण इस पर किसी ने भी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया है।
0: रजाउल करीम ने इस प्रकार वंदे मातरम पर लगे इन आक्षेपों को तर्कसंगत ढंग से खंडित किया।
2: मुस्लिम समाज की वंदे मातरम के प्रति इस भूमिका के विरोध में सबसे प्रखर भूमिका हिंदू महासभा ने निभाई। स्वतंत्रता वीर सावरकर की रत्नागिरी में नजरबंदी से मुक्ति के बाद हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने लोकशाही स्वराज्य पक्ष शुरू किया था। उस दल के सहयोग से हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्र गीत का दर्जा दिया जाए इसलिए वंदे मातरम दिवस मनाकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग का वंदे मातरम गीत के प्रति जो विरोध था उसे तोड़ने के लिए 26 अक्टूबर 1937 का दिन वंदे मातरम दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।
0: उसी समय मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया हुआ वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ भारत का ध्वज पेरिस से सरदार सिंह राणा के पास से केसरी के तत्कालीन संपादक और लोकमान्य तिलक के नाती गवी केतकर के पास 22 अक्टूबर को पहुंचा। वंदे मातरम दिन के अवसर पर पुणे में पहुंचे इस ध्वज की बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हुई सभा में स्वतंत्रता वीर सावरकर और सेनापति बापट के भाषण हुए।
2: जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन थी वैसे ही हिंदू महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि दल माना जाने लगा। 1937 से 1939 के काल में मुस्लिम लीग के वर्चस्व के कारण बंगाली हिंदुओं पर एक प्रकार का दबाव और आतंक छाने लगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ ऐसा आह्वान किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ ऐसा आवाहन किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही वे वंदे मातरम के प्रेम से ओतप्रोत थे। 1926 में 14 वर्ष की आयु में नागपुर के बैरिस्टर मोरोपंत अभ्यंकर के घर गांधीजी के सामने छोटे विनायक ने संपूर्ण वंदे मातरम गाकर सुनाया था और उसके बाद शास्त्रीय गायन में बड़ी निपुणता प्राप्त कर मात्र 17 वर्ष की आयु में संगीत सुधाकर ये संगीत की प्रतिष्ठित उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। स्कूल के दिनों में जॉर्ज नृपा गावे सद्भावे वंदुनिया पदा ये पंचम जॉर्ज की कविता गाने वाला विनायक आगे चलकर वंदे मातरम का कट्टर समर्थक बन गया।
1: 1938 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन की तरह ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 के हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया था। हिंदू महासभा और कांग्रेस जैसी सभी विचारधाराओं के अलग अलग दलों के कार्यक्रमों में उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया जाता था। खनकदार फिर भी विलक्षण मधुर आवाज अभ्यासपूर्ण और भाव रसपूर्ण गायकी के कारण उनका वंदे मातरम लोकप्रिय हो गया।

0: 1938-39 का कालखंड और भी अधिक संघर्षमय बन गया था। दिनांक 7 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा के कारागार में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजबंदियों ने भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी वंदे मातरम गाता ही रहा। जेल अधिकारियों ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। उस समय भी रामचंद्र राव वंदे मातरम के नारे लगाते ही रहे। आखिर वार्डन ने ही ये पिटाई रुकवाई। खून से लथपथ रामचंद्र राव ने आधी बेहोशी की हालत में भी वंदे मातरम का उच्चारण बंद नहीं किया था। के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वतंत्रता वीर सावरकर ने रामचंद्र राव को गौरवान्वित करते हुए उन्हें वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि देने की घोषणा की। आगे चलकर रामचंद्र राव वंदे मातरम रामचंद्र राव इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: देश भर में घट रही घटनाओं की पृष्ठभूमि में आशा की किरणें राजनीतिक स्तर पर दिखने लगीं। इन सब का परिणाम आसपास की परिस्थिति पर खुद बंगाल में भी होता रहा। अप्रैल 1940 में कलकत्ता महानगर पालिका के वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव में नगर पालिका प्रशासन में यूरोपीय प्रशासकों के एकाधिकार तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र के भाई शरद चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। नगर पालिका स्तर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी विश्वास के आधार पर हुआ ये संपूर्ण देशभर में एकमात्र गठबंधन था।
0: दिसंबर 1940 में मुस्लिम लीग के एक मंत्री ए के फजलुल हक ने भी संयुक्त मोर्चे का प्रयास शुरू किया। जिस बंगाल में मुस्लिम लीग का पौधा उगा और फला फूला, उसी बंगाल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए। हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त सरकार कभी भी टिक नहीं पाएगी, इस तरह के अंग्रेजों के झूठे प्रचार को इन प्रयासों ने करारा जवाब दिया। सुभाष चंद्र के भाई और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष शरद चंद्र बोस, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा सरकार स्थापित करने का समर्थन किया। इस संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री फजलुल हक बने। विशेष बात यह है कि इस मोर्चा सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समय वंदे मातरम गीत गाने का कभी भी विरोध नहीं किया।
2: आसे तु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वाचक स्वर जयंत पात्रकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 44वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव,

0: और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
3: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गईं। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
4: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में

0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़

0: आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन निगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूनी की और संगीत नौशाद साहिब का।

0: गाड़ी पकड़ ना पाए
1: हो गाड़ी वाले गाड़ी भीड़े बाकरे।
2: शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। SD बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम है प्यासा।

कार्यक्रम में आप सुनिए हजरत जयपुरी का लिखा गीत और वसंत देसाई का संगीत, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है जनक जनक पायल बाजी।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वाज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार वसंत देसाई हैं।

0: तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
0: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का यह है अगला गीत। फिल्म का नाम है बसंत बहार। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म CID से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन OP नैयर की है।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हेलो सहेली, बस कुछ ही पलों में।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूँ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के यहाँ आए हैं, शाहजहानपुर पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी। बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। आपके जीवन में अभी खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं हम
0: जी,
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे
0: जी। और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सहेली
1: हेलो सहेली, बड़ोदा
0: बताइए, हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: हाँ,
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का, और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह,
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और
0: यानी
1: जो आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा अथाना, वो भी ईसा वाला त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी,
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते हैं।
0: वाह वाह वाह, यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती
1: हाँ,
0: नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होलसेल में जमा राखी आते हैं, राखी के सब सामान में रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि
1: हाँ,
0: जिन
1: हाँ
0: चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना, भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।

0: સુખી ફરે, ગોપીઓના ઘરમાં જઈને લીલાયો કરે શ્યામ, આવીને મારી મઠુકી ખોરે.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए. और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना, वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए. चलिए बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है.
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं, एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खासकर तो मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ जी। मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादों का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
0: जी
1: तो उसमें हम लोग का

0: बचपन भोग लगता है, उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
1: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
0: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
1: जी
0: जी, जो गन्ने का रस जो निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है, उसके बाद गुड़ बनता है, तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
1: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
1: जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
1: जी रुचि जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: बताइए अपने बारे में बताइए।
0: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
1: जी, यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
0: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
1: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप कितना महत्व देती हैं?
0: मेरी समझ से पोषण, मेरे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
1: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, फिर यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
0: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं, शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
1: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
0: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
1: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
1: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा,
1: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

देखो देखो वहां।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है, अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है। और आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए मैडम।
0: नहीं, और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ सुनाइए आप।
1: तेरा

0: ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं। पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए तभी वो उभर के बाहर आ सकता है।
1: और आप रियाज के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
0: जी जी जी,
1: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हाँ, यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि है तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
1: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
0: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है ऐसा मुझे लगता है।
1: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी का, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
1: जी,
0: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना
1: जी। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत
1: सडनली तो याद आ गया वो गा दिया मैडम कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं नहीं बहुत सुंदर आपकी आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: आलिया भानो बात कर रही हूँ, बड़ोदरा गुजरात से।
0: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैडम मैं ब्लाइंग हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आप सोनाली पाठक बोल रही है ना?
0: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
1: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा, बहुत
0: जी हाँ
1: खुशी हो रही है।
0: जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियां क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके?
1: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, गाने
0: रेडियो?
1: सुनने का।
0: जी
1: और मुझे ना सैटरडे के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है। और दीदी, मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, और
0: जी
1: सलमा दीदी की आवाज भी।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया।
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं कि बीए के बाद में क्या करना चाहती हैं?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती हैं?
1: जी मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी, तो चलिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है
0: जी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए
1: जी। हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे, सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी।
1: महाकाल का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला
0: जी। संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: मैं सुवाना भानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए आप क्या करती हैं।
1: बेटा मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े में सिलती हूँ मैडम।
0: जी यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है।
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको
1: मैडम मुझे हिलो फरमाइश।

0: आता है वो भी बहुत पसंद है, और आज के खंचारू बम्बे टोकिन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मैडम हमको दीवाना कर गए का डाइडसम
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल न करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288 यानी 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 0।

0: दो दो। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
2: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है, जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि कहीं मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैप ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ

उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहाँ सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही है वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजाजी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पांव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई न कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था, वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते, वह कमरे ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती है।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी न कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो, और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे, और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली, अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें। और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे मां बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन ट्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब ट्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है।

जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया, देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताया स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी, जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, नेवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है, पर हवा दिखाई नहीं देती। हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर

तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं। क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करते।

रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं। बहन माँ अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है। चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है। वो सिर्फ किसी की बेटी बहू माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया। गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

छाया गीत सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मोहब्बत घर आंखों से छलक जाए तो लफ्जों की जरूरत है क्या? आंखें बंद कर लेने से ये जज्बात थम जाएंगे क्या? ये तो मोहब्बत है, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी जनाब। लाख कोशिशें कीजिएगा मगर छिपाने से ये छिप जाएंगी क्या?

मोहब्बत का इजहार तो कर दूं, मगर डर लगता है कहीं तुम खफा तो ना हो जाओगे। चलो इकरार कर भी दिया अगर, तो डर लगता है कहीं

नखरे तो ना दिखाओगे? नखरों को तुम्हारे मैं सह भी जाऊं, पर डर लगता है दिल चुरा के मेरा, कहीं तुम बदल तो ना जाओगे?

न जाने उन्हें हमारी सूरत पसंद आई या सीरत, न जाने हमारे बोलने का अंदाज पसंद आया या लफ्ज, बेवजह तारीफ करना आदत सी लगती है उनकी। कहते हैं हर धड़कन पर नाम है तुम्हारा, चाहो तो पढ़ लो हर लफ्ज।

अंतराल के बाद छाया गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यार जब परवान चढ़ जाए तो फिर क्या सुबह क्या शाम, दिल गुनगुनाता है सिर्फ अपने दिलबर का ही नाम। निकाले चाहे कोई लाख बुराई, करे कितना ही बदनाम, हंसते हंसते सह जाते हैं आशिक हर खुशी हर गम का जाम।

अचानक जब तुम यूं मेरी नजर के सामने आ जाते हो, दिल की धड़कन कुछ इस कदर बढ़ जाती है मानो सारी जिंदगी एक पल में सिमट गई हो। तुम्हारे साथ बिताए चंद पलों को याद करती हूँ तो लगता है मानो ये जिंदगी उन चंद पलों में ही थम गई।

से मिलने की कसक ने इस कदर बेताब किया कि भीगी भीगी रातों में भी जलने लगा मेरा जिया। अब अगर तुम आ जाओ तो चैन आ जाए, मेरा दिलदार आ जाए तो करार आ जाए।

सुना रही हूँ प्यार की कहानी। प्यार से सुन लो, मैंने तुम्हें चुन लिया है, अब तुम भी मुझे चुन लो। ना सुनने की हालत में अब नहीं रहा ये दिल मेरा, मैंने राह चुन ली है तुम्हारी, तुम भी मेरी राह चुन लो।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

कार्यक्रम तारानी नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। कार्यक्रम का पहला गीत आप सुनेंगे मीका सिंह, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम है ओ माई गॉड।

लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है बलफ मास्टर।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत में आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की। फिल्म का नाम है बदला।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है सलमान खान, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा है फैज अनवर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम है हेलो ब्रदर।
7: रानी देख, राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतकार हैं राजेश रोशन, फिल्म का नाम है खुददार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमान

0: से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने एक एक गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वाजिद खान और साथियों की आवाजों में सुनिए समीर का लिखा गीत। संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है रंगरेज़।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और साथियों की। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मुकाबला।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेलुलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार, शब्बीर कुमार, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगला गीत आप सुनेंगे कैलाश खेर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। गीत लिखा है निदा फाजली ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है देव।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी दिलचस्प।

0: सिर्फ बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: साथियों कार्यक्रम

विविध भारती से लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस कुछ ही देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे संध्या रंजन। 6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिए संगीत सरिता। 7:00 सुनिए फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का नवा भाग। हवा महल में आज सुनिए नाटिका हीरों का हार। 9:30 पर आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर। 10:00 छाया गीत सुनिए पूजा के साथ। कल सुबह 6:05 पर वंदनवार और चिंतन। 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग सुनिए 203। 7:45 इस कार्यक्रम में कल सुबह 6:45 पर स्वर साधना की अनुपम परंपरा में किराना घराना श्रृंखला का 5वां भाग। कलाकार है गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं 2:00, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 8:30 और 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है महान संगीतकार सलील चौधरी पर, प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। कल दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए सुनो कहानी में रश्मि वर्मा की लिखी कहानी आखिर कब तक। दिन में 11:00 चित्रपट संगीत। पर मैटनी शो में सुनिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से की गई यूनुस खान की बातचीत, संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। आज की तरह कल भी 1:00 हमारे साथ तय कीजिए संगीत का सफर, कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नखमे। दिन में 3:00 श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे, कार्यक्रम मन चाहे गीत में, प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण होगा और 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल शाम 7 बजे सुनिए विशेष जयमाला में पार्श्व गायिका आशा भोसले को। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे जिज्ञासा में डॉक्टर योगिनी मोहरे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। कल रात्रि 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे सुनो कहानी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर का पहला भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुत करता है हर्षवर्धन गवई। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। कल रात 10 बजे छाया गीत में सुनिए आरती श्रीवास्तव को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। संध्या रंजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं रवि, फिल्म का नाम है खानदान।

3:30 पर नाट्य तरंग कार्यक्रम में सुनिए नाटक आंख की किरकिरी का पहला भाग, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। निर्देशक है नंदलाल। दोपहर बाद 4 बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में सुनिए गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों को। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बसंत बहार। अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं रवि। फिल्म का नाम है खानदान।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आपका फिर एक बार स्वागत है। और स्वागत है जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी का। शकुंतला जी,
2: हाँ जी,
1: किराना घराने की विशेषताओं की बात हो रही है, हम ये जो गायकी है किराना घराने की उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आज कौन सी विशेषता है इस घराने की जिस पर आप हमें जानकारी देंगी?
2: श्रुति का जो हम सूक्ष्म और सटीक ऐसा प्रयोग करते हैं घराने में,
1: जी जी,
2: एकदम सूक्ष्म अंतर श्रुति मालूम है आपको ना, दो स्वरों के बीच में
1: जी
2: जो स्वर जो हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते ऐसे जिस स्वर रहते
1: हाँ हाँ
2: उसे हम श्रुति कहते हैं
1: जी।
2: सा और रे उसके बीच में, वैसे तो 22 श्रुति मानी गई है
1: हाँ।
2: सारे गम पधनी
1: हाँ।
2: उसमें, लेकिन असंख्य है श्रुतियाँ
1: जी जी।
2: ये नियमित रियाज और स्वर साधना उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है
1: जी।
2: वैसे तो सब घराने में दिया जाता है, लेकिन किराना घराने का जो रियाज है
1: हाँ।
2: उसको अत्यंत महत्व दिया जाता है। तो फिर श्रुति का सूक्ष्म और सटीक प्रयोग
1: हाँ।
2: इसके बारे में हम बोल रहे थे कि नियमित रियाज को स्वर स्थिर मधुर और प्रभावशाली बनता है
1: जी।
2: फिर श्रुति के सूक्ष्म अंतर की पहचान विकसित की जाती है, इससे गायन में गहराई निखार और भावपूर्ण अभिव्यक्ति आती है
1: जी।
2: स्वर में स्थिरता और नियंत्रण विकसित किया जाता है
1: जी।
2: लंबे लंबे आलाप और एक स्वर पर टिके रहने की क्षमता स्वर साधना से प्राप्त होती है। किराना घराने में स्वर साधना को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इस घराने की गायकी स्वर प्रधान मानी जाती है, जहां मेंड श्रुति और स्वर लगाव पर विशेष बल दिया जाता है।
1: अच्छा,
2: स्वर साधना केवल तकनीक नहीं बल्कि साधना और आत्मानुशन का एक माध्यम है।
1: अच्छा,
2: यही साधना कलाकार की गायकी को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।
1: बिल्कुल सही।
2: इसीलिए ये जो हम बोलते हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव हम लेते हैं जब हम गाना सुनते हैं। इसीलिए मैं नहीं जानती मैं कितना ये जो मैं बोलती हूँ उसके ऊपर न्याय दे सकूंगी, लेकिन मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगी।
1: तो कौन सा राग आपने चुना है?
2: अहिर भैरव।

0: वाह वाह, बहुत ही सुंदर। और इस बंदिश को सुनने के बाद राग अहिर भौंरे पर आधारित विजेता फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: वाह क्या बात है,
0: जो आशा भोसले जी और सत्यशील देशपांडे के स्वरों में है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवा

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को सलमा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: फौजी साथियों, अगला गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। गीत को लिखा है श्याम राज ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल बालरीवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: फौजी साथियों, अगला गीत सुनिए गायक और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव और शशि की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर ने और

चलते चलते। इस फिल्म का गीत सुनिए अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है चलते चलते।

फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हर लम्हा हर पल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। फौजी साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है अमिताभ बच्चन, अलका याग्निक, हेमा सरदेसाई, आदेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है बाग़बान।
1: It's Valentine's Day. Groove.

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

साथियों, समय कम होने की वजह से ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए। इस गीत में आवाजें थी अदनान समी, फाल्गुनी पाठक, सुखविंदर सिंह और साथियों की। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम था दीवानापन। फौजी साथियों, जयमाला कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: फिर एक बार अनमोल यादें कार्यक्रम का एपिसोड लेकर के हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज जो मैं गाना सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ वो एक कॉमेडी फिल्म का है।
0: अच्छा।
1: और ये कॉमेडी जो थी वो एक अलग तरह की कॉमेडी थी, उसमें एक सोशल मैसेज भी था।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: और ये 1972 में रिलीज हुई थी।
0: आप एक नारी एक ब्रह्मचारी फिल्म की बात कर रहे हैं?
1: जी हाँ।
0: अच्छा।
1: उस फिल्म में जितेंद्र और मुमताज थे।
0: हाँ हाँ।
1: और ये कहानी कुछ ड्रामेटिक थोड़ी सी थी कि मतलब जितेंद्र पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक बच्चे के पिताजी हैं।
0: जी जी।
1: जबकि वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी में कहानी का एक
0: राज छुपा था। अच्छा।
1: तो रफी साहब ने गाना गाया है जो शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ है, और किरण कल्याणी।
0: अच्छा।
1: जो बहुत ही रेयर लिरिसिस्ट थे हिंदी सिनेमा में, उन्होंने शंकर जी के साथ सिर्फ 3 फिल्में की।
0: अच्छा।
1: और तीनों में एक एक गाना लिखा। एक शतरंज में गाना लिखा था बदकम्मा बदकम्मा, जो
0: हाँ,
1: थोड़ा बहुत पॉपुलर हुआ था। और एक वचन में ए हबीबा करके गाना था। तो ये तीसरा गाना जो है वो मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत गाना है जो उन्होंने लिखा है। सिचुएशन के लिए बहुत ही वजनदार शब्द है इसमें, और रफी साहब की गायकी तो मैं क्या कहूँ।
0: चलिए सुनते हैं एक नारी एक ब्रह्मचारी का ये गाना।

0: किरण कल्याणी का लिखा हुआ एक बहुत ही रेयर गीतकार और उनका लिखा हुआ एक रेयर गाना हमने सुना, एक नारी एक ब्रह्मचारी इस फिल्म से। और अगला गाना भी क्या 1972 की फिल्म का होगा?
1: हाँ जी, वो फिल्म है गोमती के किनारे, जो मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी। लेकिन आजकल तो आधे गाने सिर्फ नाचने के लिए होते हैं।
0: हाँ,
1: उस जमाने में
0: जी
1: जो

0: वो बहुत ही कम गाने थे जिनका शुरू का म्यूजिक यानी प्रिल्यूड जिसे बोलते हैं वो सुनकर या फिर उसका कोरस सुनकर या आपके पैर हिलने
1: हिलने
0: लगते
1: लगते
0: हैं।
1: हैं। अच्छा
0: उनमें रिदम इतना स्ट्रांग होता है
1: हाँ।
0: कि आपके पैर उसी वक्त हिलने लगते हैं
1: जी
0: जब आपको पता ही नहीं कि गाने के बोल क्या है। पहली लाइन गाने के आने के पहले आप उस बीट पे झूम रहे होते हैं। ऐसा गाना उस जमाने के लिए बहुत रेयर था।
1: जी
0: और ये ऐसा ही एक गाना है किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया हुआ, आओ आओ जाने जहां, जो
1: हो
0: मुमताज और समीर जो संजय खान और फिरोज खान के भाई है उन पे फिल्माया गया है। आरडी बर्मन का म्यूजिक है, मजरू साहब के बोल है।
1: वाह, चलिए सुनते हैं गोमती के किनारे फिल्म का ये गाना।
2: क्या जान

0: रेयर सॉन्ग्स के सिलसिले में आज के एपिसोड में किस गीत को हम याद करेंगे राजीव जी? अब
1: जो गाना मैं याद करने जा रहा हूँ,
0: हाँ,
1: वो शायद देखिए कहा जाता है लता मंगेशकर और आशा भोसले ने करीब 70 ड्यूएट्स, दो गाने जो बोलते हैं,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: साथ में गाए।
0: अच्छा,
1: लेकिन उनमें आपको अगर ढूंढने पर भी ऐसा अलग गाना नहीं मिलेगा।
0: हाँ, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर है।
1: हाँ, लेकिन अलग जो मतलब एक पूरी तरह अलग
0: निराला सा गाना।
1: गायन है, उसमें अलग सिचुएशन है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और कॉमेडी सिचुएशन है।
0: ओ,
1: और ये गाना गुलजार साहब ने लिखा है, हेमंत कुमार जी ने उनका म्यूजिक दिया है, और फिल्म है बीवी और मकान।
0: अच्छा,
1: पर्दे पर कल्पना और शबनम,
0: हाँ,
1: जो बड़े स्टार्स नहीं थे लेकिन उन पे फिल्माया गया है। ये ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी थी बीवी और मकान, उस फिल्म का ये बड़ा ही जबरदस्त गाना।
0: चलिए सुनते हैं बीवी और मकान फिल्म से ये गाना।

0: 1966 की फिल्म बीवी और मकान का ये एक रेयर सॉन्ग हमने सुना आशा भोसले और लता मंगेशकर के स्वरों में। और राजीव जी, इसी के साथ आज का हमारा अनमोल यादें का ये एपिसोड समाप्त होता है। अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं।
1: अभी मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि अगले एपिसोड में भी हम फिर से नए गानों की तरफ थोड़ा झुकेंगे।
0: वाह जी,
1: उसमें भी कई उदाहरण ऐसे हैं।
0: हाँ, तो श्रोताओं, अगले एपिसोड तक हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।
2: अनमोल यादें। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।

0: दिनेश उपाध्याय की लिखी नाटिका हीरों का हार।
1: ओ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आज, क्या बात है?
2: बात बहुत अच्छी है मितिलदा, सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी।
1: बताओ तो सही।
2: मैं क्या बताऊं, तुम ही देख लो ये निमंत्रण पत्र।
1: निमंत्रण पत्र?
2: हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की ओर से एक पार्टी है 18 जनवरी की शाम को।
1: बस इसीलिए इतने खुश हो रहे थे?
2: क्यों मितिलदा, तुम्हें इससे खुशी नहीं हुई? मैं तो समझता था कि तुम, मेरा मतलब है तुम्हें कभी कहीं आने जाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए इस पार्टी में तुम्हें जरूर जाना चाहिए। पता है ये निमंत्रण पत्र मुझे कितनी मुश्किल से मिला है।
1: मुश्किल से?
2: हाँ, ये कोई मामूली पार्टी नहीं है, स्टाफ के बहुत थोड़े लोगों को बुलाया गया है, इसलिए सभी इस कोशिश में थे कि उन्हें ये कार्ड मिल जाए।
1: तुमने बेकार ही इसके लिए कोशिश की।
2: क्यों, मैं तो तुम्हारे लिए ही ये कार्ड लेके आया हूँ, वहाँ चलकर बहुत से बड़े बड़े लोगों से मिल सकोगे।
1: पार्टियों में जाना और बड़े बड़े लोगों से मिलना, अपनी किस्मत में कहा।
2: क्यों, ऐसी क्या बात?
1: ऐसे पूछ रहे हो जैसे जानते ही नहीं। ऐसे शानदार मौकों के लिए मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी पोशाकें रखी है ना, जिन्हें पहनकर चली जाऊंगी।
2: क्यों, तुम्हारे पास वो फ्रॉक है ना, वही जब हम थिएटर देखने जाते हैं तुम पहनती हो, मुझे तो वो हमेशा बहुत अच्छी लगती।
1: हाँ, तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन औरों से तो पूछो वे क्या सोचते होंगे।
2: क्या करूं मितिलदा, मैं भी चाहता हूं कि तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन तुम जानो एक जूनियर क्लर्क की तनख्वाह ही कितनी होती है।
1: तो ठीक है, फिर क्यों कहते हो पार्टी में चलने के लिए? कपड़े अच्छे पहन भी लो, मगर जब तक कोई जेवर न हो सब फीका लगता है। वहां सब औरतें गहने पहन कर आएंगी और मैं, इससे तो अच्छा है कि मैं नहीं जाऊं पार्टी में।
2: गहनों की जगह तुम फूलों से श्रृंगार कर लेना, इस मौसम में तो फूल बहुत होते हैं, 10 फ्रैंक में तो इतने शानदार गुलाब मिलेंगे।
1: रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी, वहां इतनी अमीर औरतें आएंगी, उनके बीच मैं गरीब सी क्या अच्छी लगूंगी।
2: अरे हाँ, याद आया, वो तुम्हारी एक सहेली है ना।
1: कौन, फॉरेस्टियर?
2: हाँ हाँ, मैडम फॉरेस्टियर, वो तो बड़ी अमीर है, तुम मुझसे एक आध गहना मांग कर पहन लेना।
1: अरे वाह, खूब याद दिलाया, अब बन गया काम, मैं कल उसके पास जाऊंगी।
3: अरे मितिलदा, तुम आओ आओ।
1: नमस्ते जीनी, कैसी हो तुम?
3: अच्छी हूँ, तुम सुनाओ, आज जीनी की तुम्हें याद कैसे आ गई? आओ बैठो।
1: मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ जीनी।
3: हाँ हाँ, कहो क्या काम है?
1: बात यह है कि मुझे एक पार्टी में जाना है, लेकिन वहाँ पहनकर जाने लायक मेरे पास कोई जेवर नहीं है, मैंने सोचा तुमसे मांग कर पहन जाऊँ।
3: हाँ हाँ, बड़े शौक से। ये लो, ये देखो, इनमें से तुम्हें क्या पसंद है, देखो लियो।
1: अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत से गहने हैं।
3: लो देखो, ये ब्रेसलेट तुम्हें पसंद है?
1: नहीं, ये नहीं।
3: और ये मोतियों की माला?
1: ये तुम्हारे पास और कुछ नहीं है?
3: है क्यों नहीं, लेकिन तुम अपनी पसंद भी तो बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो?
1: तुम कुछ और गहने दिखा दो, मैं छांट लूंगी जो मुझे चाहिए।
3: अभी लो, ये लो, ये देखो।
1: देखो, ये रहा, ये हार जीनी, इसे पहनकर पार्टी में चली गई तो बस।
3: बस फिर तो तुम ही तुम दिखाई दोगी इस पार्टी में, क्यों?
1: सच जीनी, बड़ा ही खूबसूरत हार है ये तो, कितना अच्छा लग रहा है।
3: तो इसे ही ले जा, पहले बता देती कि मुझे हार चाहिए तो मैं।
1: अच्छा जीनी, मैं चलूं।
3: फिर कब आएगी?
1: हार लौटाने तो आऊंगी ही।
3: अच्छा।
2: आज तो तुमने कमाल कर दिया मितिलदा, पार्टी में बस तुम ही तुम दिखाई दे रही थी, आज मैंने तुम्हें जितना खुश देखा है उतना कभी नहीं देखा। खैर चलो, अब कपड़े बदल लो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
1: अच्छी बात है।
2: क्या हुआ?
1: हार, मैडम फॉरेस्टर का हार कहीं खो गया।
2: क्या कहा, हार खो गया? ऐसा कैसे हो सकता है, अपने कपड़ों में देखो।
1: नहीं है, कहीं नहीं है। ओह, क्या होगा?
2: जब तुम पार्टी से लौटी थी तब था तुम्हारे पास?
1: हाँ हाँ, हॉल में मैंने उसे छू कर देखा था।
2: लेकिन गली में कहीं गिरता तो आवाज सुनाई देती, शायद टैक्सी में रह गया।
1: यही हो सकता है। सुनो, तुम्हें टैक्सी का नंबर याद है?
2: नंबर?

0: याद होगा, मुझे क्या पता था
1: अब ये क्या होगा। फॉरेस्टर को तो हार वापस करना ही होगा।
0: पर खैर मैं ऐसा करता हूँ कि उतने रास्ते दिखाता हूँ जहाँ से हम पैदल आए।
1: जाओ जाओ जल्दी करो, कहीं किसी और के हाथ में पड़ जाए।
0: अच्छा
1: और सुनो, पुलिस स्टेशन में चले जाना रिपोर्ट लिखाने के लिए।
0: और मेरा ख्याल तो ये है कि हार में विज्ञापन मिले, हार लाने वाले को कुछ नाम दिया जाए।
1: जाओ जल्दी करो।
0: अच्छा जा रहा
1: हूँ। सुनो कुछ पता लगा?
0: कुछ पता नहीं लगा, समझ में नहीं आता क्या करें।
1: न जाने कैसी बुरी घड़ी में वो हार लिया था, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करें कोई दूसरा हार खरीद कर दे दें उसी जैसा।
0: न जाने कितने में आएगा।
1: चलो मालूम कर लेते हैं।
0: किससे?
1: उस हार का केस मेरे पास है, उस पर दुकानदार का नाम लिखा है, उसी से चलकर पूछते हैं, उसी जैसा मिल गया तो खरीद लेंगे।
0: चलो देखते हैं, वो केस अपने साथ ले लो।
1: अच्छा आओ चलो।
2: आइए साहब। आइए मैडम, क्या सेवा करूं आपकी?
0: जी हमें एक हीरों का हार खरीदना है।
2: जरूर जरूर आइए, इधर आकर देखिए। वैसे किस तरह का हार चाहिए आपको?
1: सुनिए, हमें एक खास तरह के हार की तलाश है, वो हार आपकी दुकान से ही खरीदा गया था। देखिए ये है वो केस जिसमें हार गया था, इस पर आपकी ही दुकान का नाम लिखा है।
2: बेशक मेरी ही दुकान का है, लेकिन ठहरिए जरा मैं अपने बिक्री खाते में देख लूं कैसा हार था। आप बैठिए तो सही, मैं अभी देख लेता हूं। अरे भाई वो रजिस्टर उठाना जरा। हाँ ये नहीं, ये भी नहीं, इसमें भी नहीं। हाँ ये रहा ये रहा। लेकिन साहब इसमें तो सिर्फ केस की बिक्री दर्ज है, मेरा मतलब है हमारे यहाँ से सिर्फ ये केस खरीदा गया है, हार नहीं। हार शायद कहीं और से लिया गया होगा।
0: अच्छा माफ कीजिए आपको तकलीफ दी।
2: जी नहीं कोई बात नहीं, आप ही की दुकान है।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: लो सारा बाजार तो छान मारा, कहीं वैसा हार नहीं मिलता। अब
1: सुनो अभी एक दुकान और है पैलेस रॉयल में,
0: लेकिन वो तो बहुत छोटी सी दुकान है, उसमें क्या
1: चलकर देख लेने में क्या हर्ज है। कभी कभी छोटी दुकानों पर भी ऐसी चीजें मिल जाती हैं, और दुकान भी तो दूर नहीं है। वो रही, आओ ना देख लेते हैं।
0: चलो मिथिलदा।
1: हाँ
0: मिथिलदा इधर देखो, ये हार है ना बिल्कुल वैसा ही।
1: अरे हाँ सचमुच बिल्कुल वही, जरा पूछो तो कितने का है।
0: सुनिए जनाब।
3: फरमाइए।
0: ये हार कितने का है?
3: कौन सा ये?
0: हाँ, जी हाँ जी हाँ
3: जी, इसकी कीमत है 40,000 francs।
0: 40,000 francs?
3: इसमें आश्चर्य की क्या बात है साहब, असली हीरों का हार है, इमिटेशन तो है नहीं।
0: लेकिन 40,000 francs तो बहुत होते हैं साहब।
3: आप तो कीमत देख रहे हैं। चीज भी तो देखिए।
1: कुछ कम नहीं कर सकते आप?
3: देखिए मैडम, हमने इसके साथ के कई हार बेचे हैं, 40,000 से बिल्कुल कम नहीं। अब ये आखिरी बच गया है, आप चीज देख लीजिए और खुद ही बताइए।
0: देखिए मुंह मांगी कीमत की बात छोड़िए, हार तो हमें खरीदना ही है।
3: तो फिर एक बात बोलूं?
0: बोलिए।
3: फिर उसके आगे एक फ्रैंक इधर ना एक फ्रैंक उधर।
1: जी जी, जी, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। हम कोई मोल भाव करके अपना वक्त बर्बाद करने तो आए नहीं है।
3: तो फिर 36,000 francs, इससे ज्यादा ना कम।
1: क्यों लाए सर, क्या ख्याल है?
0: ठीक है लेकिन देखिए जनाब, बात यह है कि हमारा इसी तरह का एक हार खो गया है। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप 6 दिन तक इसे रोके रहिए, अगर हमारा हार मिल गया तो हम आपको बता देंगे, और अगर नहीं मिला तो 36,000 देकर खरीद ले जाएंगे।
3: ओहो बड़े दुख की बात है कि आपका इतना कीमती हार खो गया। खैर कोई बात नहीं, मैं 6 दिन तक इसे किसी को नहीं बेचूंगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद की क्या बात है मैडम, हम तो आप लोगों की सेवा करने के लिए ही बैठे हैं। वैसे मुझे ये सुनकर सचमुच दुख हो रहा है कि आपका हार खो गया।
0: कोई बात नहीं, हमें आशा है कि हमें 1 हफ्ते में मिल जाएगा वो।
3: 1 हफ्ते में ना भी मिले और आप इस हार को खरीद भी ले जाएं, तो मैं एक मौका आपको और दे सकता हूं।
1: वो क्या?
3: मान लीजिए आपका हार इस हफ्ते नहीं मिला और आप इस हार को खरीद ले गए और बाद में आपका भी हार मिल गया
0: जी,
3: तो मैं इसे वापस ले लूंगा।
0: बहुत अच्छा।
3: लेकिन
0: जी
3: पूरी कीमत में नहीं, 34,000 में, क्योंकि साहब आखिर हमें भी जिंदा रहना है।
1: कोई बात नहीं, ये ठीक है, 2,000 देकर 34,000 बचाना कौन नहीं चाहेगा भला। धन्यवाद।

0: वाल, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा।
1: अवश्य।
0: नमस्कार।
2: मितिलदा, 36,000 कहाँ है अपने पास?
3: कैसे भी हो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, तुम्हारे पास कुल कितने फ्रैंक हैं?
2: तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं। मेरे पिताजी जो 18,000 छोड़ गए थे उनके सिवा मेरे पास कुछ नहीं।
3: तो 18,000 का तो इंतजाम करना है, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं।
2: लेकिन सोचो तो मितिलदा, मान लो 18,000 फ्रैंक मैंने कर्ज ले लिया, लेकिन जिंदगी भर इस कर्ज से पीछा नहीं छूटेगा।
3: तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगी, कम से कम खर्च में हम लोग गृहस्थी चलाएंगे।
2: ओहो, मेरी समझ में नहीं आता।
3: इसमें समझ में न आने की क्या बात है? नौकरानी को हम लोग निकाल देंगे, इस मकान को छोड़कर कोई सस्ता सा मकान ले लेंगे, घर का सारा काम मैं खुद करूंगी।
2: तुम?
3: घर का काम होता ही कितना है, घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, और हाँ, कपड़े भी धोबी से धुलवाने के बजाय मैं खुद धोऊंगी। तुम चिंता मत करो, कर्ज चुकाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी।
2: उन सस्ते मकानों में जहाँ मजदूर लोग रहते हैं तुम रह लोगी? उन मकानों में पानी तक तो बाहर से लाना पड़ता है।
3: मैं सब कुछ कर लूंगी, तुम कर्ज तो ले लो। सुनो, तुम भी अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करना।
2: करनी ही पड़ेगी, मैं कल से ही कहीं पार्ट टाइम काम शुरू कर देता हूँ।
3: तो फिर चलो, वो हार ले आए।
2: लेकिन मैं तिलदा, हम चाहें जितनी मेहनत करें 18,000 का कर्ज
3: 5 साल, 10 साल, 15 साल, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे कर्ज चुकाने में। चलो भी, देखा जाएगा, आओ।
2: चलो।
3: वक्त कहां से कहां पहुंचा देता है इंसान को। आज मैं एक गरीब मजदूर की बीवी या नौकरानी जैसी लगती हूँ। अरे, ये तो फॉरेस्टियर है चीनी। ओ, ये अभी तो उतनी ही सुंदर है। 10 साल इसके ऊपर से भी तो गुजरे हैं। लेकिन जीनी, जीनी, नमस्ते जीनी।
4: मैं आपको पहचान नहीं सकी।
3: पहचान नहीं पाई? अपनी मिथिलदा को नहीं पहचानती?
4: मिथिलदा? तुम मिथिलदा हो?
3: हाँ।
4: तुम इतनी कैसे बदल गई?
3: हाँ जीनी, मैं पिछले 10 वर्षों से बड़ी मुसीबत में दिन काट रही हूँ।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ जीनी, और आज तुम्हें मुझे पहचानने में भी दिक्कत हो रही है।
4: मेरी वजह से? क्या मतलब?
3: जीनी, तुम्हें याद है?
4: हाँ हाँ।
3: आज से 10 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक पार्टी हुई थी और मैं तुमसे एक हीरो का हार मांग कर ले गई थी।
4: हाँ, याद है, अच्छी तरह से याद है मिथिलदा। लेकिन उससे क्या?
3: मुझसे वो हार खो गया था।
4: खो गया था? लेकिन तुम तो तीसरे ही दिन उसे लौटा गई थी।
3: जो हार मैंने तुम्हें लौटाया वो दूसरा था जीनी, उसे खरीदने में हम पर बहुत कर्ज हो गया, 40,000 फ्रैंक। लेकिन शुक्र है अभी एक एक पाई चुका दी गई है।
4: हे भगवान, तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे हार के बदले हीरो का हार खरीदा?
3: हाँ, तभी तो।
4: ओ,
3: क्या हुआ?
4: तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मिथिलदा? मेरा हार तो नकली हीरो का हार था।
3: क्या?
4: उसकी कीमत तो मुश्किल से 500 फ्रैंक थी।
3: सच? हे भगवान।
4: मिथिलदा,
5: हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रमेश उपाध्याय की लिखी नाटिका हीरो का हार। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में। गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है आंखें।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: लीजिए सुनिए उदित नारायण को। संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।
6: तुम तन तुम पचक दिना तुम तन तुम।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आप सुनेंगे सोनू निगम और आदेश श्रीवास्तव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का, फिल्म का नाम है जोरू का गुलाम।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समय

0: स्टार विलेन तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: घोड़ी चढ़ के बांध के सहरा उसके घर में जाऊंगा। सच कहता हूँ राम कसम मैं जोरू उसे

0: शाम को वो बारूद में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में। नगमा निगार है नुसरत बद्र, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम है दीवार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है। सुनिए, सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य

0: सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर।

0: पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धारडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
6: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के

0: साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
2: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
3: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है बॉबी।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने। संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है ये वादा रहा।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन है राजेश रोशन की और फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सागर।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो

0: बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

0: सब हाथ मिलाने वाले।
1: इस कलाकार ने फिल्म सैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था, आइए इस गीत को भी सुन लें।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

बहन विजेता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

सलमा पे दिल आ गया। ये फिल्म और शस्त्र के गीत ने दर्शकों को आकर्षित तो किया, लेकिन शस्त्र के इस गीत ने विशेष ध्यान खींचा। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो।

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां, फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज में।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2

आदि श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव पर। आलेख और स्वर जी श्याम का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार।
1: वो जब याद आए,
0: किसी की याद इतनी गहरी होती है कि आंखें बंद करो तो सामने वही चेहरा उतर आता है। यादों का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। वो हंसी सुनाई देती है, वो बातें याद आती हैं, दिल फिर उसी बीते हुए पल में लौट जाता है। समय आगे बढ़ जाता है मगर मन

0: अंधेरा रह जाता है जहां आखिरी बार साथ थे। ये रिश्ते खत्म होकर भी खत्म नहीं होते, यादों में सांस लेते रहते हैं और यादें रात की खामोशी में एक दर्द भरी धुन बन जाती हैं।
1: बहुत

उसके बिना सब कुछ तो है, मगर फिर भी कुछ भी पूरा नहीं लगता। आंगन वही है, मौसम वही है, जान भी वही है, बस उसे देखने वाली आंखों में अब पहले सी चमक नहीं। कभी लगता है उससे बिछड़कर उसे नहीं, अपने भीतर का एक हिस्सा खो दिया है। जो बातें उससे करनी थी, अब वह होंठों की खामोशी में कैद है। और यही अधूरापन हर रात दिल से एक नया गीत लिखवाता है।

0: विरह की सबसे गहरी आवाज खामोशी ही होती है, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती। फिर भी हर सांस किसी दर्द की कहानी कहती है। मन बार बार पूछता है, क्या उसे भी कभी महसूस होती होगी? क्या किसी शाम उसका दिल भी अचानक उदास होकर याद करता होगा? इन अनकहे सवालों के बीच सिर्फ तन्हाई एक जवाब बनकर सामने आ बैठती है।
1: वो शाम कुछ

दिल जानता है कि बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता, फिर भी आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद करती हैं। कभी लगता है अचानक वो सामने आ जाएगा और कहेगा, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन फिर यह मन अपनी ही कल्पना पर मुस्कुरा देता है और आंखें चुपचाप भीग जाती हैं। प्रेम में किसी को भूलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसके लौटने की उम्मीद को छोड़ना होता है।

0: उम्मीद कभी थकती नहीं, आंखें पथराने लगती हैं, चांदनी रातें भी और गहरी होती जाती हैं। आखिरी मुलाकात की हर बात उम्र भर के लिए दिल में याद बनकर रह जाती है। उसका आखिरी बार मुड़कर देखना आज भी आंखों में एक मंजर की तरह ठहरा हुआ है। तब कहां पता था कि वह पल हमारी कहानी का आखिरी पन्ना बन जाएगा। काश उस पल को वहीं रोक लेते हम, काश आज साथ होते हम।
1: वक्त

गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: बीतती जाए रात।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम डूब जाएं श्री कृष्ण की भक्ति, उनके प्रेम और उनकी मधुर लीलाओं के रंग में। आज इस कार्यक्रम में हमने योगेश्वर, मुरलीधर, गिरिधर, नटवर नागर, भगवान श्री कृष्ण के भजन आपके लिए चुने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपने फिल्म अमर प्रेम का ये गीत सुना। गीत आनंद बख्शी का था और धुन बनाई थी राहुल देव।

दोस्तों, नटखट कान्हा की मुस्कान, माखन की मिठास और बांसुरी की मधुरतान, आज का दिन है प्रेम, भक्ति और उल्लास का। आइए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम रंग जाएं कान्हा के उस प्यारे रंग में। ये आवाज है शोभा गुरटू की, आप सुन रहे हैं मीराबाई का ये भक्तिपथ।

वर्णन करने वाला एक प्रसिद्ध संस्कृत स्तोत्र। इसे गाया था शंकर महादेवन और साथियों ने। आइए सुनते हैं अगला भक्ति पद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कृष्ण तो सभी के हैं, वृंदावन की राधा के भी, मीरा की भक्ति के भी और हमारे आपके मन के भी, है ना। राधा ने कृष्ण को प्रेम में पाया, मीरा ने भक्ति में, और हम कृष्ण को अपने विश्वास और अपने भावों में पाते हैं। और शायद कहते हैं यही कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे एक होते हुए भी हर प्रेम करने वाले के अपने हो जाते हैं। जी हाँ, अपने। जब मीराबाई कहती है ना कि सांवरा मारी प्रीत निभाजियो जी, तो इन शब्दों में एक भक्त का समर्पण भी दिखाई देता है और एक प्रेमिका का मधुर आग्रह भी। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में संत मीराबाई का ये भक्ति पद। संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। अभी आपने श्री कृष्ण मधुराष्टकम ये सुना, श्री वल्लभाचार्य द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण की अंगों और स्वरूप की मधुरता का

अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में राजेश जौहरी का लिखा एक भक्ति पद सुनिए, आवाज पामेला सिंह की है।

तुम हमने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया है। आइए एक बहुत ही सुंदर राजस्थानी रंग वाला मीराबाई का भक्ति पद आपको सुनवाते हैं, श्याम माने चाकर राखू जी। इसमें मीरा कृष्ण से कहती है कि मुझे अपना सेवक बना लो, मैं वृंदावन में रहकर तुम्हारे दर्शन कर सकूं और तुम्हारी लीलाएं गा सकूं। दोस्तों ये पद राजस्थानी रंग वाले अत्यंत मधुर पदों में गिना जाता है। आइए सुनते हैं वाणी जयराम की आवाज में ये भक्ति पद।

और आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये भक्ति पद। हय्याम साहब का संगीत है और स्वर मोहम्मद रफी का।

ग्यावस्थी मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम में अगला भक्तिपद हमने एमएस सुबुलक्ष्मी की आवाज में आपके लिए चुना है। ये भक्तिपद संत मीराबाई का है।

मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, संत मीराबाई का लिखा भक्ति पद अभी आपने सुना MS सुबुलक्ष्मी की आवाज में। दोस्तों, भगवान कृष्ण को हम सभी ने अपनी अपनी नजरों से देखा, चाहे राधा हो, मीराबाई हो, रुक्मणी हो, गोपियां हो, ग्वाले हो, सभी ने कृष्ण को देखा, चाहा, अपनी अपनी नजर से समझा। लेकिन संत सूरदास ने भगवान कृष्ण को कैसे चाहा, कैसे समझा? सूरदास की दृष्टि में कृष्ण का नाम ही वो मधुर संगीत है जिसमें डूबकर भक्त संसार के सारे दुख भूल जाता है। संत सूरदास ने अपने पदों में बाल कृष्ण की नटखट छवियों से लेकर उनके दिव्य और करुणामय स्वरूप तक कृष्ण को प्रेम के हर रंग में देखा है। और संत सूरदास के लिए कृष्ण केवल आराध्य नहीं, बल्कि उनके जीवन की आंखें और उनके हृदय की ज्योति थे। तो आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में संत सूरदास का ये भक्ति पद।

श्रोताओं, कृष्ण की बांसुरी, हाँ कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं थी, वो एक प्रेम की पुकार थी जो हर हृदय तक पहुंचती थी। और कहते भी है ना कि जब श्याम अधरों पर बांसुरी रखते हैं तो वृंदावन की गलियां भी जो है महक उठती हैं, और ऐसे में सभी का जो मन है वो ठहर सा जाता है ना। शायद इसीलिए आज भी जब कोई स्वर गूंजता है, श्याम तेरी बांसुरी पुकारे राधा नाम, तो लगता है कि प्रेम की वही अनंत पुकार आज भी हमारे मन के वृंदावन में गूंज रही है। तो इसी मधुर बांसुरी की तान के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है गीत गाता चल, आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी की बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थे, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना

कार्यक्रम का अगला गीत शिव हरि का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और विनोद राठौड़ की आवाजें। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव की है।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ, वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रहना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रहना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति, आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थीं आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम अभी उपस्थित होते हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं आज फिर। और आज इस सफर में हम थोड़ा सा कवितामय हो जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, आप समझ गए मेरा इशारा, क्योंकि संगीत की दुनिया में कुछ गीत ऐसे लिखे गए हैं दोस्तों, जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है, भावों की गहराई है। और आप इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे वही गीत, कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत जिनमें हिंदी कविता अपनी पूरी गरिमा और मधुरता के साथ खिल उठी है। तो आइए शब्दों और सुरों के इस खूबसूरत संगम में हम खो जाते हैं और चलते हैं इस सुरीले सफर पर। हमारे दोस्तों ने कहा है कि आज भी इबारत मंदाकिनी जी ने लगता है रात भर जाकर लिखी है, हम इसे कैसे पढ़ पाएंगे, इसका जवाब देने में तो हमें घंटों लग जाएंगे। तो आपको इस इबारत का जवाब देने के लिए कहा किसने था, ये बताइए। हम तो आपसे दो सवाल करेंगे, उसका जवाब आपको देना है और इबारत पढ़कर आपके दिलो दिमाग में जो विचार आए वो लिखने हैं। तो इबारत पढ़ने में बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगा होगा मुझे लगता है। चलिए हम टुकड़ों में आज इसे पढ़ते हैं, क्योंकि सफर लंबा है और हमें कवितामय भी होना है। हमने आपके लिए लिखा था कि हिंदी कविता में प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं है, प्रेम में श्रद्धा है, समर्पण है, प्रतीक्षा है, विरह है और एक दूसरे के अस्तित्व में अपना संसार खोज लेने की भावना भी है। तो जब कोई कवि अपने प्रिय को केवल प्रिय नहीं बल्कि अपने प्राणों की अधिष्ठात्री, अपने हृदय की स्वामिनी या प्रिय प्राणेश्वरी मान लेता है, तब प्रेम कविता बन जाता है। और प्रेम का दूसरा रूप हम कहते हैं प्रतीक्षा को। हाँ, कभी प्रिय सामने नहीं होता लेकिन उसकी अनुपस्थिति हर क्षण, हर पल, हर क्षण सालती रहती है। मन प्रश्न करता है, आंखें खोजती हैं और हृदय पुकारता है, तू छुपी है कहाँ। और ये केवल विरह का गीत नहीं बल्कि प्रतीक्षा की कविता है। और इसी प्रेम में जब रंग जुड़ता है प्रकृति का, प्रकृति जुड़ती है, कल्पना जुड़ती है, तब शब्दों में चित्र बनने लगता है। कितना अद्भुत लगता है तब कि कवि फूलों के रंग को दिल की तरंग से जोड़ देता है। और यही कविता की शक्ति है, जहाँ प्रकृति बाहर नहीं रहती, हमारे भीतर उतर जाती है, बस उसे महसूस करना होता है। और हाँ, कविता का दूसरा रंग है प्रकृति। हिंदी कविता और प्रकृति का संबंध बहुत पुराना है। फूल, पत्ते, ऋतु, आकाश, चांदनी और जल केवल दृश्य नहीं रहे बल्कि हिंदी कविता में ये भावों के प्रतीक भी बन गए। तो कवि कहता है, क्या कहता है, स्वप्न झरे फूल से। आहा, कितना प्यारा गीत है। तो

0: कवि केवल फूल झरने की बात नहीं करता, वो स्वप्न के टूटने और जीवन के क्षणभंगुर सौंदर्य को एक साथ हमारे सामने रखने की बात करता है कि स्वप्न भी फूलों की तरह है, सुंदर कोमल क्षणिक, और शायद इसी क्षणिकता में उनका सौंदर्य भी छिपा हुआ है। तो चलिए, ये इबारत का हमने पहला भाग पढ़ा है क्योंकि इस सफर पर हम निकल पड़े हैं और गीत का आनंद भी हमें लेना है, तो करते हैं शुरुआत। क्या कहते हैं आप
1: प्रिये?
0: हम भी श्री गणेश करें इस सफर का।

जी तो श्री गणेश तो हो गया है ना इस कार्यक्रम का, और हम सफर पर निकल भी पड़े हैं। बहरहाल हम आपको बता दें, किशोर कुमार की आवाज में आपने फिल्म हम तुम और वो का गीत सुना। गीतकार वर्मा मलिक थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इस विस्तृत सुंदर सी इबारत के अनुसार कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं बल्कि मन के भीतर उठने वाली उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। इसमें कम शब्दों के माध्यम से गहरे भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का ऐसा क्रम होता है जो सुनने में संगीत जैसा लगता है। कविता का एक सुंदर संसार प्रकृति भी है, लेकिन कविता केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं रहती, वो जीवन के रास्तों पर भी हमारे साथ चलती है। धूप हो या छाव, साथ हो या अकेलापन, वो हमें रुकने के बजाय चलते रहने और जीवन को गीत की तरह जीने की प्रेरणा भी देती है। इबारत में बहुत सारे लोकप्रिय गाने भी हैं और आपने उन लोकप्रिय गानों का जिक्र किया भी है। देखिए ना, हमने इबारत लंबी लिखी लेकिन साथ में कोशिश यही की कि उस इबारत में

छिपे गीत संगीत को आप पहचान लें और आप लोगों ने पहचान भी लिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो इबारत नहीं है, इबारत 5-10 पंक्तियों की होती है, आपने तो पूरा निबंध लिखा है और उस अंत में गीतों के बोल लिख दिए, जैसे प्रिय प्राणेश्वरी या और बहुत सारे गीतों का। आप इसे जिस अर्थ में देखना चाहें ये आपकी पसंद है ना। हमने तो कोशिश की है कि जो कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, यानी ऐसे गीत जो लिखे गए फिल्मों के लिए, लेकिन जिनमें कविता रही, कविता की सुगंध मिली, भावों की गहराई मिली, हमने उन गीतों का चयन आज किया है। और उन गीतकारों ने फिल्मी गानों को हिंदी कविता के रूप में जो पेश किया वो बहुत ही लाजवाब रहा है उनका ये प्रयास। तो आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हीं गीतों पर केंद्रित रखा है, तो जाहिर है बात कहने का अंदाज भी थोड़ा सा तो खुला होना ही होगा ना। किसी बात को समझाने के लिए आप उसके तह तक नहीं जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लंबे अंतराल के बाद सुरीला सफर लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी के साथ सभी मित्रों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लंबे अंतराल की तरह आज आपने इबारत बड़ी और लंबी डाल दी है। इस पर फिल्म आनंद में राजेश खन्ना द्वारा बोला डायलॉग याद आ गया, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। क्या बात है। तो आज का कार्यक्रम भी बड़ा है, देखिए ना कितनी बड़ी बात लेकर हम आए हैं कि जीवन में कविता क्या मायने रखती है। और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं, वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है। क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्दशैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद, लय को लेकर आई कविता के भीतर जो सौंदर्य, भाव और संदेश मिलता है वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है, आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है और कहीं ठिगनी रह जाती है तो हाइकू कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत। और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार है नीरज।

दीपक उठे चरण चरण, शोर मच गया केलो चली दुल्हन चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़ा बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन।

गीतकार नीरज की ये सुंदर कविता अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है, तो हमने भी सोचा इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दिया जाए ताकि आपको बोझिल न लगे। तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्ज्वल पवित्र

पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है, क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल। समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को जीवित कर देते हैं। और जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे कि कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई। ये गाते हुए गुनगुनाइए, जैसे कि आज इस सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं, परिवार है। धरती केवल मिट्टी नहीं, माँ है। आकाश केवल विस्तार नहीं, पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी, तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं, वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएं लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविन्द्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं, उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश झलके, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने ऊषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी कायनात से जोड़ देता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है, क्या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं। आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में। छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं। प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम समर्पण, कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों

पिरोकर सजाया गया है। और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक्षा में वही विरह है, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं और कभी भीतर से आवाज देते हैं, चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दुर्योधन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती है। और एक और जैसे जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविन्द्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता।

कवितामय गीत लिखे गए जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिये, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्तिपद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपालदास नीरज की हैं वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूं, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं। आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास के बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।

गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंच चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका।

में करके स्नान आई। बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेन्द्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादम्बिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है, रामराजे फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अरे बस इतना ही। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं, अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई है क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा है कि पूरी रात जग कर लिखी है आपने, किसी ने कहा है कि आज पूरा दिन लग जाएगा इस इबारत को पढ़ने और जवाब देने में। चलिए आप जैसा समझे सर।

आंखों पर आपकी हर बात, आपका हर भाव। बस यही होना चाहिए कि इस तरफ से हमारी जो कोशिश है वो कम नहीं होनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए, प्रदीप की आवाज, फिल्म का नाम नास्तिक, गीतकार प्रदीप और संगीत सी रामचंद्र का।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया यह गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूं आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी, कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के आए हैं, शाहजहां के पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी बताइए नीता जी, अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों की राखी बन जाती है, रिचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। आपके जीवन में अभी
1: हाँ
0: खुशियों के दिन आ रहे हैं, जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना।
1: जी,
0: अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं हम,
0: जी
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे।
0: जी और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली, बड़ोदा
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: हाँ,
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: बहुत सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह,
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा अथाना, वो भी ईसा वाला त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते।
0: वाह वाह वाह, यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती
1: हाँ,
0: नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होलसेल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान मैं रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि जिन
1: हाँ,
0: चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी तो कुछ गाकर सुनाइए।
1: खमार खमार मारो वल्लणु गाजे श्याम, आवी ने मारी मटु की होरे परे रे श्याम, आवी ने मारी मटु की होरे। खमार

0: નથી ખોરે, ગોપીઓ ના ઘર માં જઈને લીલાયો કરે શ્યામ, આવીને મારી મઠુકી ખોરે.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए. और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना, वो भी करते रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए. चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है.
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ।
0: जी
1: तीन बच्चे हैं मेरे, दो बेटी है, एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खासकर तो मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ जी। मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादो का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन

0: आने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं, त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
0: जी
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी
1: जी, जो गन्ने का रस जब निकलता है ना तो पहले मीठा बनता है,
0: ओहो
1: उसके बाद गुड़ बनता है, तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात
1: जी
0: करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से। नमस्ते।
0: जी रुचि जी नमस्ते, बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी
1: लाइफ
0: जिंदगी का लुत्फ उठा
1: जी,
0: रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है। और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, कि जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है, अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।

0: क्या बात है। और आपने जैसे
1: होता
0: बताया कि
1: है।
0: आपकी
1: जी
0: उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए
0: नहीं
1: मैडम।
0: नहीं और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ
1: जी
0: सुनाइए
1: मैम,
0: आप।
1: 13

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत
1: तो याद आ गया, वो गा दिया मैडम कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं नहीं बहुत सुंदर आपकी आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप, और जैसे आपने कहा कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं, ने कुछ ग्रहण?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं। पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए तभी वो उभर के बाहर आ सकता है।
0: और आप रियाज के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
1: जी जी जी,
0: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ, यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए पहले आप। जबरदस्ती अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती है।
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
1: हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है ऐसा मुझे लगता है।
0: जी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी का, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
0: जी,
1: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना
0: जी। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अब के बरस भेज भैया को।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली,
1: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
2: आलिया भानो बात कर रही हूँ, वडोदरा गुजरात से।
1: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
2: मैडम मैं ब्लाइंग हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आप सोनाली पाठक बोल रही है ना?
1: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
2: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा।
1: जी हाँ,
2: खुशी हो रही है।
1: जी हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियाँ क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके?
2: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनने का।
1: जी
2: और मुझे ना सितारों के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
2: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है एक दिल ही तो है। और दीदी मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है,
1: जी
2: सलमा दीदी की आवाज भी।
1: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हूँ।
1: क्या पढ़ रही हैं आप?
0: बीए कर रही हूँ।
1: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं कि बीए के बाद में क्या करना चाहती हैं?
0: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
1: टीचर बनना चाहती हैं?
0: जी मैम।
1: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
0: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है।
1: जी हाँ, देखिए आप टीचर बनना चाहती हैं, तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
0: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
1: जी, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: सिस्टम फिल्म मूवी का पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: साइबर रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: जी मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: उज्जैन से अनिता जोशी ने।
0: अनिता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है
0: जी। बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी। और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं।
0: जी। अच्छा, अपने शहर के बारे में बताइए।
1: जी, हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे, सांदीपनी आश्रम है उनका
0: जी, उज्जैन।
1: महाकाल का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला।
0: जी, संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुवाना बानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए आप क्या करती हैं?
1: बेटा मैं घर भी देना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में, कपड़े ने सिलती हूँ मैडम।
0: जी यानी सिलाई करने का आपको शौक है।
1: मुझे आपके कार्यक्रम भी सुनना बहुत पसंद है
0: कौन से कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: मैडम। मुझे हिलो फरमाइश आता है वो भी बहुत पसंद है, और आज के फनकार और बम्बे टोकी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैडम हमको दीवाना कर गए का डाइडसम
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल न करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है

0: और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288 यानी 28670288 और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: रानी देख, राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावन इलबालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।